ही हमें संभालता है। जी हाँ, आपका कितना संतुलन है अपने जीवन पर? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गमगीन हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है जनाब। हम भी तो, जब हमें दुख आता है तो हम भी तो कभी कभी गम में डूब जाते हैं। थोड़ा सा उदास तो हम हो ही जाते हैं। भाई इंसान है तो इंसान के अंदर जो भाव है ना, वो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी उदासी को इतना गमगीन नहीं कर देना चाहिए कि हम ये भी भूल जाएं कि हमारे जीवन के साथ साथ और भी लोग जुड़े हैं, हमारे कुछ अपने अपने खास, जो दिल के बहुत करीब हैं, जो हमें दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो चलिए जनाब, यही तो जीवन का फलसफा है। और फलसफा सब कुछ हमारे हाथ में ही है। हम टिमटिमाते दिए की तरह जलें या फिर बुझ जाएं। पर बुझे क्यों जनाब, हम तो गम छोड़कर खुशियों को मनाएंगे और खूबसूरत से गीत गाएंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ हूं मैं आप ही की दोस्त रूपा धवन। जिंदगी के सुनहरे रंगों की बात कर रहे हैं सूर्य की किरणों की तरह। 5:37 मुट्ठी में से रेत की तरह समय धीरे धीरे फिसल रहा है, लेकिन हम भी पूरे के पूरे आपके साथ जुड़े रहेंगे। समय चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे और गीतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। जो समय है जैसा समय है उसको हंसकर गुजारेंगे और यूं ही गीत गुनगुनाएंगे।

दोस्तों, भोर सुहानी हमें प्रेरित करती है अपनी भूल से शिक्षा लेने के लिए। फिर से उम्मीदों को जगाने का एक नया दिन शुरू हो चुका है। बस हमें भी देर नहीं करनी और पूरी शिद्दत से लग जाना है अपने सपनों को साकार करने के लिए। गाते हुए

गुज्जू ए मुन्नी तुम भी गाओ ऐसे नहीं बोलो मैं।

साथियों, उमंगों से ही जिंदगी मुस्कुराती है, हर नई सुबह उम्मीद जगाती है, जो सपनों को दिल से अपनाते हैं मंजिल भी उन्हीं के कदमों में आती है।

दोस्तों, भोर सुहानी अपने साथ बहुत सारे सपनों को लेकर आई है, जिसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक नया जोश हमें खुद से भरना होगा। फिर से नई खुशियों को ढूंढने के लिए तैयार रहिए, खुशियों को थामने के लिए तैयार रहिए। भोर सुहानी से फिलहाल विदा लेती है रूपा। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको आज के कार्यक्रमों की खास जानकारी दे दें। 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे आपके लिए लेकर आएंगी पूजा कपूर। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आज आप सुन पाएंगे बालकांड का भाग 103।

6:55 से आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी में। सात बजकर दस मिनट पर योग पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 8:45 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिक दिल लगी। 9:00 आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिक दिल लगी एक बार फिर से, जिसमें आपके साथ होंगी रेखा रानी। 10:30 पर कार्यक्रम होगा दिल का मेलबॉक्स। 6:00 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6:00 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: गृहमंत्री
0: अमित शाह

0: अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit...

आदाब, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मिडवे 268.8 एक मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आज जुमातुल मुबारक है। शक समत 1948 के आशरा महीने की 5 तारीख मुताबिक 26 जून 2026 ईस्वी। सुबह के 6:30 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है। मैं हूं आपका मेजबान सैयद नवाज शरीफ।

تتھ حلقس تیر لئی یت کران منی مصطفیٰ.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.

0: neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27 to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on the Narcotics Control 2026 to 2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. In a major relief to the industrial and commercial LPG consumers, the government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The National Testing Agency, NTA, has opened a window for candidates.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1-800-112-100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
6: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
7: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
6: अरे वही अपना 60 रुपया।
7: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
6: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
7: और दूसरा?
6: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
7: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
6: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: आप पयाम सुबह में हमारे साथ बने हुए हैं और बात हो रही है यौमे आशूरा से मुतालिक। समीन, करबला दरअसल एक ऐसा नज़रिया है जो हर दौर के इंसान को ये सबक देता है कि जब हक और बातिल आमने सामने आ जाएं तो खामोशी इख्तियार करना भी एक किस्म की ताईद बन जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से उम्मत को ये पैगाम दिया कि उसूलों पर समझौता वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन तारीख में इज्जत सिर्फ इन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो सच्चाई पर साबित कदम रहते हैं। इस्लाम की बुनियाद अदल, तकवा, अमानत, दियानत और इंसानियत की हिफाजत पर रखी गई है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं अकदार के फरोग में गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खुलफाए राशिदीन ने भी इसी रास्ते पर उम्मत की रहनुमाई की,
11: मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सियासी हालात में तब्दीलियां आईं और इक्तदार की कश्मकश ने इस्लामी माशरे को मुतासिर करना शुरू किया। ऐसे हालात में उम्मत को ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी जो सिर्फ इक्तदार नहीं बल्कि दीन की असल रूह की हिफाजत करे। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में लिखी है।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 7:45 होने वाले हैं। आइए खबरें सुनते हैं।
1: ये छे आकाशवाणी सुबह 7:53 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस्ब तजम्मुल अहमद। गड़ अख नजर खास खास खबरन हंजन सुर्खियन पेट। वजीर अजम नरेंद्र मोदी भारतस मज अमेजॉन दस 48 अरब डॉलर हजि रिकॉर्ड सरमाकारी हुंद खैर मकदम कोरमुत। तिजारत तो सन्नतन हिंद वजीर पीयूष गोयल वोनमुत भारत बरतानिया आजाद तिजारती महद वनिस तामुक सारवि खोत जाम महद। अवल जुलाई पे पासपोर्ट हासिल करने बापत फीसस मज हुरर करना आमुत। तो राम मंदिर अतियातन अंदर खरद बर्द करने किस मामलस मज उत्तर प्रदेश अंदर एफआईआर दर्ज करना आमुत। पेश खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी भारतस मज अमेजॉन दस 48 अरब डॉलर हजि रिकॉर्ड सरमाकारी हुंद खैर मकदम कोरमुत। तिमो कोर नई दिल मज अमेजॉन किस सीईओ एंडी जेसियस सीत मुलाकात। अकि सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन वजीर अजमन जे सरमाकारी कर नौजवान बापत नव मौके याफ। तिमो वोन जे ये दुरुस्त दुनिया अंदर भारतस मज सरमाकारी करने चे बढ़वनी दिलचस्पी हिंस अक्कसी करान। मीडिया सित कत करान वोन एंडी जेसियन जे तिम चे नरेंद्र मोदी सिंध विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत नजरिया सित सेठा मुतासिर। तिमो दियुत भारत चे तरक्की हिंदे सफरस मज अक तवील मुद्दती शराकत दार बनने किस अजमस फ्यूर। वेनेजुएला चे कारगुजार सदर डेलसी रोड्रिगजन चु वोनमुत जे मुल्कस मज इन वालों दो ताकतवर बुनलो सी अखत 64 नफर मार तो करीब 1,000 जख्मी गमत। ये बुनल चु पतमे अकिस सदी मज वेनेजुएलास अंदर आमतो ताकतवर बुनलो मज अख गंजरावन यवान यमच हट पूर खत्तस अंदर महसूस करन आई। अति छे वारिया इमारत खाली करन आमच तो बुनलिक असरात चे ब्राजील किस अमेजॉन इलाकस ताम महसूस करन आमत। अ दौरान चु वजीर अजम नरेंद्र मोदी अथ बुनलिस मज इंसान जू जाय सपदनस पे दुख तो अफसूस बाबान वेनेजुएला कन लोकन सहित हमदर्दी हुंद इजहार कोरमुत। तिमो छे बचाव तो इमदादी कार्रवाई अंदर भारतीय इमदाद पेशकश त कर्मच। तिजारत तो सन्नतन हिंद मरकजी वजीर पीयूष गोयल वोनमुत जि भारत बरतानिया जामे इकतसदी तो तिजारती महद सीटा करे आलमी मईशतस पो

40 मिनट पर एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा दिन के 1:10 पर। अहले बैत की पहचान, इस मौजू पर बात करेंगे मीर मोहम्मद दिन के 1:40 पर। रेजगारिया करबला, इस मौजू पर बात करेंगे गुलाम अली पंपोश दिन के 2:15 पर। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम पेश होगा दिन के 3:00। पार्टी प्रोग्राम आप सुनेंगे सपहर 4:30 पर पेश होगा पंजाबी प्रोग्राम। सपहर 5:00 आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त करेंगे। शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गनी बायन हिंदी खतरा।

सपेहर 5 बजे आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त करेंगे। शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गनी बायन हिंदी खतर। हाल हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन पेश होता है शाम 7 बजे। तो सामीन ये थी तफसील आज अब के बाद हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों की। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडिया व्यू 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात समाप्त करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की

लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी

있어.

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 8:30 हो रहे हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से खबरें समाप्त करेंगे।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैनुल-अक़वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाज़राई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा, अक़वामे मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की इक्तिसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक्तिसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने की खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के 2 जहाजों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का अहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, ताकि मुल्क में मनशियात के स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पेट्रोलियम और कुदरती गैस

0: की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मौतल कर दी गई थी उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारफीन को काफी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3-C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान सरकार ने लाजमी खदमात के एक्ट के तहत अहकाम जारी किए थे, जिसकी रूह से C3-C4 स्ट्रीम को सिर्फ एलपीजी की पैदावार के लिए बरोकार लाने की बात कही गई थी, ताकि अंदरून मुल्क एलपीजी की पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कमर्शियल और सनती एलपीजी सार्फिन के बारे में जामे डेटा बरकरार रखें, ताकि मौसर मनसूबाबंदी और सप्लाई बंदोबस्त में सहूलत हो सके। सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी को वसत देने के अपने अहद को भी दोहराया है। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए अबूरी आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की है। तलबा इस महीने की 28 तारीख तक 200 रूपए फी सवाल की फीस अदा करके इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कबूल किए जाने की सूरत में ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में सख्त कार्रवाई की है और 8 नामजद मुलजिमों और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। मस्कूरा FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जाम सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की याद में साल भर चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जाबिराना और मुतलकुल अनान निजाम हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहता और आखिरकार इसका खात्मा हो जाता है।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: 1975 की इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने के सिलसिले में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था, ताकि अवाम में जमहूरियत, आईनी अकदार और शहरियों के हकूक के ताल्लुक से बेदारी को तकवीत मिल सके। बैन अलाक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि मगरबी एशिया में हाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। IMF की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए IMF के मुआसलात महकमे की डायरेक्टर जूरी कोजेक ने कहा कि गैर मुल्की उथल पुथल के बावजूद भारत की मईशत मुस्तहकम रही है और मजबूत अंदरूनी मुल्क मांग से इसको तकवीत मिली है। IMF ने कहा कि माली साल 2026-27 में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इस तरह अप्रैल में नजर सानी के बाद शरह तरक्की में इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरकरार रहेगा। मोहतरमा कोजेक ने यह भी कहा कि साल की पहली सहमाही के दौरान भारतीय मईशत की कारकर्दगी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छी रही है। वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235

0: ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है। आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1000 उमरा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे। मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, नए रिकॉर्ड कायम।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैन अलाक्वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये जो आकाशवाणी उन श्रीनगर स्टेशन मीडिया व्यूज आधार अठे शरिया अठक मीटर ते FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ संपेट समीन सुबह चे 8:35 सब दे बोले वजू स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर अजुक मौजू छु क्या दूसरों के बच्चों से जाती खिदमत लेना दुरुस्त है। मौजू अस पेट करन कथ मौलाना फैयाज अहमद जरू प्रोग्राम एक प्रोड्यूसर छ सलीम एजाज कपड़ा।
3: समीन पेश खिदमत छ प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम छ तहतम वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: सबै इन्टरेस्ट स्पॉन्सर प्रोग्राम बजा हम सफर अजक मौजूस क्या दूसरों के बच्चों से जाती खिदमत लेना दुरुस्त है मौजूस पटेश कथकरान मौलाना फैयाज अहमद जरू तो प्रोग्राम एक प्रोड्यूसर छ सलीम एजाज कपड़ा यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 9:22 हो चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा पियाजो एक्साइड ईशर निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
0: सभी आज जुमतुल मुबारक है 10 मुहर्रम अल हराम मुताबिक 26 जून 2024। आज के मकामी अखबारात की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सैयद नवाज शरीफ और मेरे साथ है साइका सलीम।
2: जी नवाज, सामिन को बता दें कि अखबारात ने जिस सुर्खी को नुमाया किया है उसमें लिखा है आज यौम आशूरा पर वादी भर में जुलूस जुलजला बरामद होंगे। सबसे बड़े आज़ादारी के जुलूस श्रीनगर और बड़गाम में निकाले जा रहे हैं। 9 मुहर्रम को भी वादी के तवील तोलो अर्ज में आज़ादारी के जुलूस, जिले डल में कश्तियों में सवार मातमी जुलूस, गांव कदल श्रीनगर में सबसे बड़ा मातमी जुलूस निकाला गया।
0: जी, आईन के कदल का दिन के मौके पर वजीर आजम का सोशल मीडिया पर पैगाम, एमरजेंसी के दौरान जमहूरी इकदार का डटकर दिफा करने वालों को खराज अकीदत।
2: एक और शह सुर्खी है यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पहलगाम में कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जायजा।
0: जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौमी शाहरा के प्रोजेक्टों का जायजा, मरकजी वजीर नितिन गडकरी की आला मयार को यकीनी बनाने की हिदायत।
2: एलजी का नुनवन बेस कैंप का दौरा, यात्रियों के लिए इंतजाम का जायजा।
0: एक और खबर, 25 जून 1975 को नाफिज करदा इमरजेंसी, जमहूरी इकदार पर संगीन हमला एलजी।
2: यात्रा इंतजामात और मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां, डीजीपी की 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत।
0: किसानों को धोखा देने और खेतीबाड़ी का जाली सामान बेचने के इल्जाम में 8 साल पुराने मुकदमे में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में चार्जशीट, जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के इक्तसादी जराइम विंग कश्मीर ने वादी के किसानों को धोखा देने और खेतीबाड़ी का जाली सामान बेचने के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
2: एक और रोजनामे की खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहर्रम के 10वें दिन आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद किया। वजीर आला का शहदाए करबला को खराज अकीदत।
0: जिले डल निगीन लेक और दीगर झीलों के तहफ्फुज के लिए वजीर आला की हिदायत।
2: एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में खेलों के फरोग के लिए तारीखी फैसला, पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्पोर्ट्स को मंजूरी।
0: मंशियात स्मगलरों के मुश्तबा ठिकानों का बड़े पैमाने पर मुहासिरा, समाज दुश्मन वगैरह कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए यह खसूसी ऑपरेशन पुलिस।
2: एएवाई कुंभों के लिए राशन की तकसीम फी फर्द माहाना 7 किलो फराहम करने की तजवीज पर गौर।
0: जम्मू में आला अफसर रोमन अहमद का इंतकाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार रंजोगम।
2: एक माह की मुअत्तली के बाद गुलमर्ग गंडोला खिदमात फिर से बहाल।
0: समीन सुर्खियां अभी जारी है, आप बने रहिए।

एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 9:20 हो रहे हैं। आइए खबरें समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:00 सपद मोहम्मद अलताब बोजन खबर। वेनेजुएलास में रात सुबह आम बुनलिस में मरल वाल तदाद हुत अखत अरशीत सपूदमुत जन 1500 खुद ज्यादा नफर जख्मी सपूदमित तो करीबन 2000 नफर फसेमित हकमो वोनमुत जास 972 घर बेघर सपूदमित वेनेजुएलास में रात सुबह 7:05 तो 7:02 शिदत वाजे जो बुनल लट आम यम कि तत् तबाही सपज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जुलाई किस गोडनिकिस हफ्तस में शुरू सपदन वाजनि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा हिंदे सिलसिलस में तमाम इंतजाम तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत दिमित अनंत नागस में श्री अमरनाथ जी यात्रा मुतलिक दोन बैन अवी कानफ्रेंस इख्तमी तकरीबी खिताब करान वो गवर्नर जैर यकीनत किस ये दौरस में ये यात्रा अस कसरत मज वहदत पैगाम दिवान।
2: तब श्री अमरनाथ जी यात्रा को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर हित पहलगाम में यात्रा के नुनवन बुनियादी कैंप दौर कर श्रद्धालुओं बापत करना आमत इंतजाम मौकसी पे जायज। वजीर अला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में जेलन हंद तहफ़ बापत पोशवन इदारजाती अथवास साइनसी मनसूबबंदी तो बर वक्त अमलावरी पे जोर दुत श्रीनगर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी हज 17वीं बोर्ड मीटिंग सदारत करान हूँ वजीर अला डल नगीन खुशहालसर तो गिलसर हिवन जेलन में जारी तहफुजती कामन अलावे इन सत वस्त बुनियादी ढांचस तो इंतजामी मामलन तफसीली जायज। उमर अब्दुल्ला दि मुतल महकमन तो अथारटियन हिदायत जिमन कानूनी जबतन तो माहौलती मयारत सेलन सबस्त जेर तमीर प्रोजेक्टन पे काम हंदिस रफ्तार मज आज ओशुर मुहरम अत सिलसिलस मज वादी खास पोच शिया आबादी वादन इलाकन मज आजादारी जुलजना तो अलम शरीफ किस जुलूसन हुंद एहतमाम यम बापत इंतजामिया तरफ तमाम जरूरी इंतजाम तो तैयारी मुकम्मल करना आमच इन तकरीबन दौरान अकीदत मंद करबला कें शहीदन हज अजीम कुर्बानी याद कर तिमन खराज अकीदत पेश करान श्रीनगर नेर सारी खोत बोड़ जुलूस बोट कदल पे इमाम बारगाह जड़ बल ताम अमे अलावे च बड़गाम ते वादी हिंदन दोयमन जिलन हिंदन शिया आबादी वालन इलाकन मज यौमी आशुरा च तकरीब मनावन यवान यमन मज मौतम करन वाले सीन कोबी मरसियत नवाकानी करान छ
3: जकीन जार दार वदा पाई हम बच लल वस ये थारस करो
4: हम लख कार मत मरतम बच कर तम शीर थारस करो
3: जकीन जार दार वदा पाई हम बच लल वस ये थारस करो
4: हम लख कार मत मरतम बच कर तम शीर थारस करो
3: गिंदन पोजात में उस हम हरमलन कुर नख मरस करो
4: हम लख कार मत मरतम बच कर
1: यम तकरीबात बिला खलल मुनद कर बापत जारी करने आमच ट्रैफिक एडवाइजरी मुताबिक आम लूकन मशवर दिन आमुत जिम रूजन महरम चन तकरीबात वाले इलाकन मज गैर जरूरी गसन निश लोब पत्मन दोन वरियन दौरान तलीम हंदिस शोबस मज प्रावन आमच कामयाबी हज जिक्र कर तलीम हज वजी सकीना युवन जि सरकार हे मौक तो इदारन मज नवर अनस तो मयारी तलीम आयतन थान बापत वादबंद श्रीनगर मज हिमाचल प्रदेश किस तलीम हंदिस वजी रोहित ठाकुर सत बात कर सकीना युवन जख्तराज तो टेक्नोलॉजी काम मज अन ये तलीम हंदिस शोबस मज मजीद कामयाबी अन दोशवी वजीरों कर् तलीम अथवास पायदार कर कत बात गिंदने द्रकन वजीर सतीश शर्मा कौर चंदनवाड़ी हूं दौर कर तत यात्रा 2017 हिंदिस सिलसिलस मज कर आम इंतजाम जायजा तमो।

0: इन तकरीबात के बिला खलल इनेकाद के लिए जारी करदा ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आम लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो मुहर्रम की तकरीबात वाले इलाकों में गैर ज़रूरी तौर जाने से गुरेज करें। तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने गुज़श्ता 2 बरस के दौरान शोबे तालीम में हासिल करदा कामयाबियों को उजागर करते हुए कहा है कि सरकार मसावी मौके और इदारों में जदीदियत लाते हुए मियारी और शमूलियाती तालीम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। श्रीनगर में हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तालीम रोहित ठाकुर के साथ बातचीत के दौरान सकीना इत्तू ने कहा कि इख्तिरा और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए शोबे तालीम को मजीद कामयाबियों से हमकिनार किया जाएगा। दोनों वज़रा ने तालीमी शराकत दारी को मजबूत करने पर गुफ्तगू शनीद की। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने चंदनवाड़ी का दौरा करके वहां यात्रा 2026 के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कश्मीरी पंडित कॉलोनी वेसू में मुनक्किद करदा एक खेल इवेंट में भी शिरकत की। वजारत ताउन की जानिब से श्रीनगर में सहकार से समृद्धि विजन से ज़मीनी हकीकत तक के मौजू से 8वें 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ भारत के कोऑपरेटिव के शोबे के मुस्तकबिल के विजन और नक्शे राह पर गौरखोज के लिए ज़मीनी तजुर्बात और हकीकी हालात को बुनियादी सुतून करार दिया गया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: श्रीनगर स्टेशन मीडियम न्यूज आता 8.8 मीटर 17.5 मेगाहर्ट्ज़ इनपुट समय 9:17 समथे पेश मरमुल हराम किस मुकद्दस मौकस पे खास पेशकश फतेह कोफा शाम तहरीर मकबूल साजिद।
2: तारीख गवाह यजीद इब्न माविया युथ बरसर इकतदार आव गुड़नेती लोग सु माज अल्लाह दीन इस्लामुक नाम नमूद मिटावने चे नाकाम कोशिश करनी बहसित हकीम इस्लामी कानूनन तो शरीयतस हिफाजत करने बजाय लोग तिहंद मूल प्रार्थने तो गुलिस्तानी इस्लामस आबियरी करने बदल लोग तत् वुजार करनस पत
3: तमाम मौरिख मुतफिक से यजीद उस नाम निहाद खलीफतुल मुस्लिमीन बनित नमरूदी दाम दीवान तो फिराउनी गुरु रुख सर आम मुजहिर करान तो खिलाफत किस मौजज तो मुकद्दस मनसबस पन्ने अनमान इस्तेमाल करित तमुक नन्य वान इस्तेहसाल करान
2: यमकार दिन इस्लामस मंज हराम तो ममनूच करार दिन आमित यजीद पलीद ओस्तिम हलाल जानान मसलन शराब युस अजरो दीन मुबीन उमुल खबाइस छु यजीद ओस सु खुल्लम खुल्ला चवान तो तमकिस नशस मंज इस्लामस खिलाफ वाहियात तो खराफात बकान तो गुमराह कुन शार बनान
3: यजीद ओस अलल एलान प्रेत कां फिस्को फजूर अंजाम दिवान तो लुकन बिला खौफ तमिश तरकीब दिवान तो इस्लामस टीप द टर्न चटान
2: गोया सरवरे कायनात फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यस बेपनाह मेहनत तो मशक्कत इस्लाम किस फैलावस तो तरवीजो इशातस मंज मुसलसल त्रुवहन वरियन कर्मस अस यजीद लोग तत जाय तो मिलियामेट करनस पत
3: मतलब हजूरी पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो युस लातेदाद कुडिरत क्रीट मुसीबत मुश्किलात असवनी हंज बर्दाश्त करित हकुक तो पजरुक चोंग रोशन कुर्मुत उस यजीद लोग तात छत करने च नाकाम कोशिश करने
2: बहरहाल 10 मुहर्रमुल हराम सन 68 हिजरी के सुबह संगर युथी फैल यजीद वुत अमली तौर इस्लामुक तो पजरुक ये चोंग छत करने बापत मैदानी कारजारस मंस
3: मगर दैमी तरफ इतदाई मिसबाउल हुदा حضرت امام حسین علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونگ بدستور منورت درخشاں تھاون باپت پنن دوستت اصحاب تا انصار ہت مدان۔
2: حالانکہ حسین ابن علی علیہ السلامس آئی لچھ بدن روپین تو اقتدارچ پیشکش کرن، مگر آفتاب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کت یہن لالچ مز تو ذلتک دنیای

समीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। लघवी एतबार से मुहर्रमुल हराम के माने इज्जत, अजमत, बुजुर्गी और हुरमत वाला महीना है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का पूरा नाम यौम आशूरा है, जो कबलस इस्लाम से ही चला आ रहा है। इस दिन को ये नाम यानि यौम आशूरा इसलिए दिया गया कि इस तारीख को बहुत से अहम वाक़यात पेश आए, चनांचे कई 10वीं तारीखें जमा होने की बुनियाद पर इसका नाम यौम आशूरा हो गया।

जब हम इन दिनों को याद करते हैं तो प्यास की वो शिद्दत भी याद आती है जो उस वक्त वहाँ पर खेमों में छाई हुई थी। और ये प्यास हमें सिखाती है कि अगर उसूलों पर समझौता करना पड़े तो ज़िंदगी की आसाइशें बेमाने हो जाती हैं। उन दिनों की वो तपती धूप और उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमों में पानी की कमी के बावजूद पुरसकून रहना हमें ये सबक देता है कि मसाइब में भी तवक्कल और अपने मकसद से वफादारी ही एक सच्चे इंसान की असल पहचान है। हुसैनियत दरअसल थक जाने का नहीं बल्कि डट जाने का नाम है।

किस तरह दुश्मन से मुकाबला करते रहे और आने वाली नस्लों के लिए हिम्मत व शुजात की बेनज़ीर मिसाल कायम कर दी। अल्लाह पाक हमें भी उनके नक्शे कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।

अंदाज़ बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का, बेदाग ज़िंदगी का यही तो कमाल है। बेदाग ज़िंदगी का यही तो कमाल है, हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का।

марний нещад розахан, ларетра. Панень мир.

0: سنتي سبوزان مرسيا خاني مرسيا خاص زاكر غلام حسن زالپوری تسيتي سنيس دهي مسلانا سپريريو ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियो 268.81 और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति

डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

0: बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovekush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply

0: जी समीन आपने नवासना पेश कर रहे थे कैसर निजामी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियो 268 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से खबरें नशर होंगी, पहले उर्दू में उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजाम और तैयारियां पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत दी है। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतल्लिक दो रोजा बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि गैर यकीनियत के इस दौर में ये यात्रा हमें कसरत में वहदत का पैगाम देती है।
2: को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम में यात्रा के नुनवन बुनियादी कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम का बरसरी मौका तफसीली जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने

0: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इसवा प्रोग्राम हेचस पर तुहज मेजबान साइका तबसुम तुहस खदमत मज हाजिर मान तरफ कर तो माई बुरु सलाम कबूल प्रोग्राम मज वे खर मकदम तुहद समिन वमेद तुम सारी बखैरो आफियत अल्लाह ताला थो सारे पनसिब जमानस मज समिन यमिया शुरा दह मुहरम सुदह यम दह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदानी करबलस मज शहीद आये कर जुलमो कुस जुलम कोर हर कह जुलम यथ मज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिहस अयालस आय त्रेश त बंद कर यानि आब आव तिहंद बापत बंद कर जन सितम जरीफी ये कि खवातीन आम जन लोक बच तम तव बख्शन मगर नवासे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिहंद इस्तिकामत तिहंद सबर तो तिहज दिलेरी जालिम थोक जुलम करान मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामन तो तिहंद आलो अयाल हौसलो हूक जुलम पसपा कर अगर चे जुलम प्रेथ रंग ताहम रूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताहम रूद बाकी अहल खाना पन्नी इबादत मज महू अद सो नमाज सो सबर उस या सो तिलावत कुरान शरीफ समय आशूरा चु हक अदल इखलकी उसूलन हिंस हिफाजत करनच अख अलामत तो आशूरा या योमी आशूरस मज जिस वाक्य पेश आव सह दर्ज दिवान के इंसान कित हालात ऐसन मगर हक बापत पज तमिस खड़ा रोजुन तो अगर अज्च दौरच कत करो आज लोकच कत पेश तो इंसान हिम्मत हार जाता है। हमारे नौजवान सुसाइड करते हैं, कितने दुख की बात। सवन यम सात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करथ मदीना आय तुम वो कि यहूद दह मुहरम रोज थवान तुम पृछ सहाबियन कि क्या वजह छ कि रोज थवान तह आव कि यह दह इंद बापत खुशी हूं दह इम रोज अवकिन थवान तजक यानि दह मुहरम बनी इसराइल आजाद सपदमुत यानि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सपद बनी इसराइल या इसराइल कौम आजाद करनस मज फिरौन के जंगल से आजाद करने में वो कामयाब हुए यानी जन यह आजादी है ये मिली तिम दह मुहरम अवकिन यहूद रोज थवान युद्ध हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू बूज तमो फरमो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बनी इसराइलस पेठ ज्यादा हक थवान इसलिए आसो तो रोज थवान तो तुह कोर फैसले कि आसो जो दह रोज थवान या थवो दह तो कह मुहरम रोज या थवो नव तो दह मुहरम रोज यम आशोर रोज थवन फजीलत बयान करान फरमो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माह मुबारकस पत्न दोन रोज थवन फजीलत योम आशूरा दह मुहरम कह मुहरम या नव दह मुहरम रोज आशूरा अत पे अकबा तैयार करम मोहतरम गुलाम हसन बाबा बुल बोजो
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन वालिहि तय्यिबीन ताहिरीन आज रोज आशूरा अज आव यजीद सिंद हुक्म सहराए करबलास मज खाना वादई नुवतस ताराज कर आज गई सो मेज खून उस नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हवाला करमस अज आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम खाबस अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुस अत हालस मन पाबि रहन सर बि रहन तो रेश मुबारक खाक आलूद यह खाक खाकि करबला रवाह तिरमिजी दोम मुहरम अकहठ हिजरी पेठ आज तमाम मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन मुख्सर कैफल सहराए करबलास मज यजीदी फौज किस तंग महासरस मज मोरिक लेखान तथ पोट गिरमित इथ पोट वाज मज क्रांक बंद आसान खेमन मज सिर्फ अल्लाह तश सदा गसान तिकाज आब उस गवार नायाब आब उस द्रुग तो खून अहलबैत अलैहिस्सलाम उस सोग खानदान नब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम मुखदरात तो मौसमन उस अच्छन जून लजमस तो वठन पत्र नवि मुहरम बाद जवाल कराव फौजी यजीदन बहुक में इब्न ज़ियाद खेमगाई हुसैनी अलैहिस्सलामस पे हमल अलिया मुकरमा जनाब ज़ैनब

रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन

समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नहीं चाहता कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईमान दिया, कुरान दिया, अल्लाह से मिलवाया और इसका बदला क्या तजवीज किया? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत। सवाल ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कौन लोग मुराद हैं? उसका फैसला भी कुरान ने कर दिया है। अरब के जनूब मशरिक में एक इलाका है नजरान, वहाँ ईसाई लोग रहते थे। उन ईसाइयों के चंद बड़े बड़े पादरी मदीना आए ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजहब के मामले में बहस करें। उन लोगों का यह कहना था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि जिस तरह अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, उसी तरह अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। ऐसी हालत में हजरत ईसा अलैहि सलाम भी उसी तरह अल्लाह के बंदे हैं जिस तरह हजरत आदम अलैहि सलाम। ईसाई ये साफ और सीधी बात मानने पर तैयार नहीं हुए। वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं। फैसला ये हुआ कि ईसाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करें। मुबाहला के ये माने हैं कि दोनों अल्लाह से दुआ करें कि जो हक में हो वो बाकी रहे और जो झूठ कह रहा हो वो मिट जाए। इसी मौका पर कुरान पाक में आयत नाजिल हुई, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। फमन हाजा काफी हिम मिम बाद मा जा का मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्दा इल फनज अल लअनतल्लाहि अलल काज़िबी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इतना ही पहुंचाने के बाद भी अगर ये लोग तुमसे हुज्जत करते हैं तो इनसे कह दो कि आओ हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाएं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाएं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ और फिर हम एक दूसरे के लिए बददुआ करें और झूठों पे अल्लाह की लानत करें। मुबाहला के दिन पैगंबर इस्लाम इमाम हुसैन हजरत फातिमा तुज़हरा और हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए। ईसाइयों के बड़े पादरी ने जब नूरानी चेहरे आते हुए देखे तो उसने अपने लोगों से कहा कि भाग जाओ, मैं ऐसे नूरानी चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये दुआ करें ये पहाड़ जहरा जहरा हो जाए और हम सब पना हो जाए, और जजिया देने का वादा करके वापस हो गए। इस आयत में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि आप अपने बेटों औरतों और नस्लों को साथ ले जाइए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील इस तरह की कि बेटों की जगह इमाम हसन अलैहि सलाम और इमाम हुसैन अलैहि सलाम को लिया और औरतों की जगह हजरत फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लिया, नफ्सों की जगह हजरत अली अलैहिस्सलाम को लिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि यही आपके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। अल्लाह ने इन्हीं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हर मुसलमान पर वाजिब की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार यही बताया है कि मोमिन वही है जो इन अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। जो शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक है, यानी जाहिर में मुसलमान और हकीकत में काफिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
1: जी समीन, आप अहले बैत से की पहचान से मुतलिक एक बातचीत सुन रहे थे, पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे मीर मोहम्मद। आए अब सुनते हैं नवा, पेश कर रहे हैं नफीस लोरी।

0: जी समीन, आप सुन रहे थे नवा, पेश कर रहे थे नफीस हिलोरी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम में 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर दाखला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर अतीये में खुरद वुरद के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम AI सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की क्यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। मर्दों के क्रिकेट में आज शाम बेलफास्ट में T20 बैन अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इस मैच में सभी की नजरें पहली बार के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर हैं। और फीफा आलमी कप में ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने पैराग्वे के खिलाफ खेले गए मैच में कोई गोल न करते हुए ये मैच बराबरी पर खत्म हो गया। खबरें तफसील से। वजीर दाखला अमित शाह ने नशीली मादों की रोकथाम के मकसद से एक मुत्तहिदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीले मादों की ये लानत कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, माशी मफादात और नौजवानों नीज मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा ख़तरा है। उन्होंने रूहानी पेशवाओं, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए एक वाहिद प्लेटफार्म पर यकजा हों। जनाब शाह ने यह राजधानी नई दिल्ली में नॉर्को ताउन मरकज NCORD की आला सतह की 10वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कही।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के

0: खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: सेहत की मरकजी वजारत ने एक नोटिफिकेशन का मसौदा जारी किया है जिसमें नशीली दवाओं के जाब्तों में तरमीमात तजवीज़ की गई हैं। इन जाब्तों के तहत दरामदशुदा दवाओं पर इन्हें कम से कम 12 महीने तक रखने की मुद्दत लिखी होनी चाहिए। मसौदे में नशीली दवाओं से मुतालिक 1945 के जाब्तों में से 31वें जाब्ते में तरमीम के लिए कहा गया है। वजारत ने बताया कि इस मुजवजा तब्दीली का मकसद मरीजों के लिए क्वालिटी वाली दवाओं की लगातार दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए दवाओं की सप्लाई चेन में बेहतरी लाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरखास्त की थी जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। भारत ने एक भरोसेमंद और मुस्तहकम सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की कायद वाली तहरीक के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद मसनूई ज़हानत AI पर मबनी टेक्नोलॉजीज़ को मजीद ताकतवर बनाना है। यह दस्तखत कल वाशिंगटन में दूसरी पैक सिलिका समिट के दौरान 34 मुल्कों के साथ किए गए हैं। इक्तसादी उमूर से वाबस्ता अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकोब हेलबर्ग ने बताया कि अमरीका भारत के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 21वीं सदी का एक सबसे नतीजा खेज मुआहदा बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड और ट्रस्ट पहल समेत कई फोरमों में भारत और अमरीका के दरमियान कलीदी शोबे में तबादला ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी S. Krishnan और भारतीय सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। भारतीय वफ्द ने सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत और मजबूत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में इश्तराक को आगे बढ़ाने से मुतालिक सनती रहनुमाओं के साथ मुजाकरात भी किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप से नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO, इतलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों से भी नशर किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्रामों को इसके हिंदी नशरिए के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन्हें रोशनी बिखेरने वाली एक ऐसी अदबी कदावर शख्सियत करार दिया है जिनकी तहरीरों से भारत की कई नस्लों को वतन परस्ती का जज्बा और सकाफती फख्र हासिल होता है। इस साल की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की तहरीक आज़ादी के लिए मुल्क को वंदे मातरम का अतिया किया जो सबसे ज्यादा जिंदा व पाइंदा रहने वाला तहरीक का एक जरिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी जिंदगी में महरूम पसमानदा तबकों और इस्तेशाल शुदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने कहा कि उनके अजीम नजरियात आने वाले दिनों में कौम की रहनुमाई करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के ख्वातीन के फोरम 2026 में ख्वातीन की क़यादत वाले तहरीक के अपने अज़्म को दोहराया है। आज एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नापूर्णा देवी ने जोर देकर कहा कि ख्वातीन महज तरक्की के फायदे हासिल करने के लिए नहीं हैं बल्कि वो 2047 तक विकसित भारत की ताकतवर तरीन मुहर्रिक भी हैं। भारत में जर्मनी के सफीर फिलिप अकरमान ने कहा है कि भारत काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। एक न्यूज़ एजेंसी

0: शोलों से
1: शोलों
0: लिपटते हैं
1: से
0: शब्बीर
1: लिपटे
0: के
1: के
0: दीवाने,
1: दीवाने,
0: दिन रात सुलगते हैं शब्बीर के दीवाने।
2: दीवाने
0: शोलों से लिपटते हैं
1: शब्बीर
0: शब्बीर
1: के
0: के
1: दीवाने
0: दीवाने, दिन रात
1: सुलगते
0: सुलगते हैं
1: हैं
0: शब्बीर
1: शब्बीर
0: के
1: के दीवाने।
0: दीवाने। हर शहर बुझा सा है, हर करिया लुटा सा है। हर शहर
1: बुझा
0: बुझा
1: सा
0: सा
1: है,
0: है, हर
1: हर
0: करिया
1: करिया
0: लुटा
1: लुटा
0: सा
1: सा।
0: है। हर घर से निकलते हैं शब्बीर के
1: वाह
0: दीवाने।
1: बहुत अच्छा,
2: वाह,
1: बहुत
2: घर
1: अच्छा,
2: से निकलते
1: बहुत अच्छा।
0: हर
1: लुटा
0: शहर बुझा सा है, हर करिया लुटा सा
2: सा
0: है।
2: है
0: हर घर से निकलते हैं शब्बीर के
2: शब्बीर के दीवाने।
0: दीवाने। हर शहर बुझा सा है, हर करिया लुटा सा है। हर शहर
1: बुझा
0: बुझा सा
1: सा है,
0: है, हर करिया लुटा सा है। हर घर से निकलते
2: निकलते
0: हैं
2: हैं शब्बीर
0: शब्बीर के
1: के दीवाने।
0: दीवाने।
2: वाह
0: और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, पड़ती है ज़रूरत जब देते हैं लहू अपना।
1: पड़ती
0: पड़ती है
1: है
0: ज़रूरत
1: जरूरत
0: जब
1: जब
0: देते
1: देते
0: हैं
1: हैं
0: लहू अपना।
1: लहू।
0: हर दर्द समझते हैं शब्बीर के
1: ये दीवाने
0: दीवाने।
1: वाह
0: इस नाम से मिलती है तारों को भी ज़ेबाई। इस नाम से मिलती है तारों
1: तारों को
0: को
1: भी
0: भी
1: जेबा
0: ज़ेबाई। हर शाम चमकते हैं शब्बीर
2: शब्बीर के
0: के
2: दीवाने।
0: दीवाने।
1: चमकते हैं शब्बीर के दीवाने।
0: क्यों दर्द जगाते हैं ये शम्मा के सीने में। क्यों
1: क्यों दर्द
0: दर्द
1: जगाते
0: जगाते
1: हैं
0: हैं
1: ये
0: ये
1: शम्मा
0: शम्मे
1: के
0: के
1: सीने
0: सीने
1: में।
0: में। क्यों आग पकड़ते हैं शब्बीर
1: शब्बीर
0: के
1: के दीवाने।
0: दीवाने।
1: क्यों आग पकड़ते हैं शब्बीर
0: क्यों
1: के
0: दर्द
1: दीवाने।
0: जगाते हैं ये शम्मा के सीने में।
1: क्यों
0: क्यों
1: आग
0: आग
1: पकड़ते हैं
0: पकड़ते हैं
1: शब्बीर
0: शब्बीर
1: के
0: के
1: दीवाने।
0: दीवाने। एहसास में गुलशन है, जज्बात में खुशबू है। एहसास में
1: एहसास में
0: गुलशन
1: गुलशन
0: है,
1: है
0: जज्बात में खुशबू
1: खुशबू
0: है।
1: है।
0: हर आन महकते हैं
1: वाह
0: शब्बीर के
1: वाह
0: दीवाने।
2: बहुत अच्छा,
0: एहसास
1: बहुत
0: में
1: अच्छा,
0: गुलशन
1: वाह
0: है,
1: बहुत अच्छा, बहुत
0: जज्बात
1: अच्छा।
0: में खुशबू है। हर आन
1: हर आन
0: महकते
1: महकते
0: हैं
1: हैं
0: शब्बीर
1: शब्बीर
0: के
1: के दीवाने।
0: दीवाने।
1: बहुत
0: एक आग के
1: अच्छा,
0: दरिया से हर रोज
1: वाह
0: गुजरते हैं। एक आग के
1: आग
0: दरिया से हर
1: हर
0: रोज
1: रोज
0: गुजरते
1: गुजरते हैं
0: हैं। किस गम में दहकते हैं शब्बीर
1: शब्बीर के
0: के
1: दीवाने।
0: दीवाने।
2: वाह वाह वाह,
1: फिर एक बार।
2: हर आग
0: एक आग के दरिया से हर रोज गुजरते
1: गुजरते
0: हैं।
1: हैं
0: एक
1: हर
0: आग के दरिया
1: दरिया
0: से
1: से
0: हर
1: हर रोज
0: रोज
1: गुजरते
0: गुजरते
1: हैं
0: हैं। किस गम में दहकते हैं शब्बीर
1: शब्बीर
0: के
1: के दीवाने।
0: दीवाने।
1: गम में
0: और
1: दहकते हैं
0: ये
1: शब्बीर
0: शेर
1: के
0: मुलाहिज़ा
1: दीवाने।
0: फरमाइए, जज्बात हुसैनी है, खिदमात हुसैनी है। जज्बात हुसैनी
1: हुसैनी
0: है,
1: हैं
0: खिदमात हुसैनी
1: शब्बीर
0: है। हर दिल में धड़कते हैं शब्बीर के
1: के दीवाने।
0: दीवाने।
1: बहुत अच्छा, बहुत दिल में धड़कते हैं शब्बीर
0: अब
1: के
0: मक्ता मुलाहिज़ा फरमाइए,
1: दीवाने।
0: क्यों रास न आए आदिल आतशे गम तुमको। क्यों रास न
1: रास न
0: आए
1: आए
0: आदिल आतशे गम तुमको। शोलों पे थिरकते हैं शब्बीर के
1: शब्बीर के
0: दीवाने।
1: दीवाने।
0: शोलों से लिपटते
1: लिपटते
0: हैं
1: हैं
0: शब्बीर के दीवाने। दिन रात सुलगते हैं
1: शब्बीर
0: शब्बीर
1: के
0: के
1: दीवाने।
0: दीवाने।
1: जनाबे अशरफ आदिल साहब शब्बीर के दीवाने रदीप में अपना सलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब कमर हसन कासमी साहब आपसे कि हमें अपना कलाम मरहमत फरमाएं। जनाबे कमर हसन कासमी साहब
3: मतला पेश खिदमत है।
1: इरशाद
3: सच्चाई से मक्कार कहाँ प्यार करेगा,
2: प्यार करेगा
3: बीमार जहन तुझको भी
1: भी
3: बीमार
1: बीमार करेगा।
3: करेगा।
1: वाह
3: पहले तो भरी बज्म में इकरार करेगा,
2: करेगा
3: जब वक्त पड़ेगा वही
2: वही
3: इनकार
1: इनकार करेगा।
3: करेगा।
1: पहले तो भरी बाजू में
3: इकरार
1: इकरार करेगा,
3: करेगा,
1: जब वक्त
3: जब
1: पड़ेगा
3: वक्त पड़ेगा
1: वही
3: वही
1: इनकार
3: इनकार
1: करेगा।
3: करेगा। गुफ्तार के गाजी तो हमेशा ही मिलेंगे। गुफ्तार के गाजी तो
1: हमेशा
3: हमेशा ही
1: ही
3: मिलेंगे।
1: मिलेंगे।
3: क्या पेश हुसैनी कोई
2: कोई किरदार
3: किरदार करेगा। क्या
2: करेगा।
3: पेश
1: हुसैनी
3: हुसैनी
1: किरदार
3: कोई किरदार करेगा।
2: के गाजी था
3: पाबोसिए जालिम पे भरोसा नहीं करना।
1: पाबोसिए
3: पाबोसिए
1: जालिम पे
3: जालिम पे
1: भरोसा
3: भरोसा
1: नहीं
3: नहीं
1: करना।
3: करना। गफलत में कभी सर पे तेरे वार
1: वार
3: करेगा।
1: बहुत
3: गफलत में
1: अच्छा
3: कभी सर पे तेरे
1: वार
3: वार
1: करेगा।
3: करेगा। जो अमन के दुश्मन हैं कमर उनसे गिला क्या। जो
1: जो अमन
3: अमन
1: के
3: के दुश्मन
1: दुश्मन
3: हैं
1: है
3: कमर
1: उनसे
3: उनसे
1: गिला
3: गिला
1: क्या।
3: क्या। मुनसिफ ही अगर अमन से पैकार करेगा। और चंद अशार मुलाहजा फरमाएं, हवा मुखालिफ फिजा मुखालिफ जमी मुखालिफ जमा
2: जमा
3: मुखालिफ।
2: मुखालिफ
3: हुसैनियत को करेंगे कायम हो चाहे सारा जहां
2: जहां
3: मुखालिफ।
2: मुखालिफ। फिर पढ़िए। वाह वाह
1: फिर
3: हवा
1: हवा
3: मुखालिफ
1: मुखालिफ
3: फिजा
1: फिजा
3: मुखालिफ
1: मुखालिफ जमी
3: जमी
1: मुखालिफ
3: मुखालिफ जमा
2: मुखालिफ
3: मुखालिफ।
2: हाँ।
3: حسینیت کو کریں

0: कुर्बान हुए असगर शब्बीर की बस्ती में। और देखें कि दी थी जो सदा तूने ऐ इब्ने अली हक की, दी थी जो सदा तूने ऐ इब्ने अली हक की, गूंजे है वही अक्सर शब्बीर की बस्ती में, गूंजे है वही अक्सर शब्बीर की बस्ती में। और ये शेर के दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी, लेकिन दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी लेकिन खुलता है फकत ये दर शब्बीर की बस्ती में।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
0: शुक्रिया। के दावा तो हुसैनी का करते हैं सभी, लेकिन खुलता है फकत ये दर शब्बीर की बस्ती में। उसका मकता अर्ज कर रहा हूँ कि मानूस यजीदों की बैयत न कभी करना, मानूस यजीदों की बैयत न कभी करना, ये जान भी जाए गर शब्बीर की बस्ती में। मानूस यजीदों की बैयत न कभी करना, ये जान भी जाए गर शब्बीर की बस्ती में। असगर का दहन छूने मचली थी कई मौजें, पहरा था किनारे पर शब्बीर की बस्ती में।
1: सुभान अल्लाह, परवेज मानूस साहब ने बहुत खूबसूरत अपना सलाम शब्बीर की बस्ती में रदीफ में बहुत तो उम्दा मज़मून तलाशे थे। तो अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हसन अनजर आप साहब आपसे कि बारगाह शहादत में अपना नजराना गुजारें। जनाबी हसन अनजर साहब,
2: हक पर निसार असगरो अकबर हुसैन के, हक पर निसार असगरो अकबर हुसैन के, मक्तल में सब शरीक बराबर हुसैन के, मक्तल में सब शरीक बराबर हुसैन के। ये अहले कूफा आज कैसे हो गए दुश्मन, ये अहले कूफा आज कैसे हो गए दुश्मन, दुश्मन कल तक थे मेहरबान और यावर हुसैन के। ये अहले कूफा आज कैसे हो गए दुश्मन, कल तक थे मेहरबान और यावर हुसैन के। मालूम था सब लश्करे इब्ने ज़ियाद को,
1: मालूम था सब लश्करे इब्ने ज़ियाद को
2: मरकब बने थे कौन पैगंबर हुसैन के। मालूम था सब लश्करे इब्ने ज़ियाद को मरकब बने थे कौन पैगंबर हुसैन के। राहे खुदा में दी गई हर चीज रोशन है, राहे खुदा में दी गई हर चीज रोशन है, ताबिंद तर हैं लालू जवाहर हुसैन के, ताबिंद तर हैं लालू जवाहर हुसैन के। जिल्लत नसीब उस तरफ अब तक यजीद है, शादाब इधर सर्व सनोबर हुसैन के, शादाब इधर सर्व सनोबर हुसैन के। तागूत की मस्ती कहाँ इस दर्जे बढ़ जाती, तागूत की मस्ती कहाँ इस दर्जे भर जाती, चलते अगर हम नक्श कदम पर हुसैन के, चलते तागूत की मस्ती कहाँ इस दर्जे भर जाती, चलते अगर हम नक्श कदम पर हुसैन के। इज्ज़े बयान दरपेश है अंजर में क्या लिखूं, इज्ज़े बयान दरपेश है अंजर में क्या लिखूं, इतने बड़े एहसान हैं हम पर हुसैन के, इतने इज्जे बयान दरपेश है अंजर में क्या लिखूं, इतने बड़े एहसान हैं हम पर हुसैन के। हक पर निसार असगरो अकबर हुसैन के, मक्तल हैं सब शरीक बराबर हुसैन के।
1: जनाबी हसन अंजर साहब अपना आजिज़ाना और बहुत पुर इंकसार सलाम पेश कर रहे थे बारगाह शहादत में। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर शफक सोपोरी साहब,
3: सलाम के चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ।
1: इरशाद।

0: तेरे की वो रस में
1: वो रस
0: निभाएंगे
1: में
0: क्या,
1: निभाएंगे क्या,
2: सरदेन की क्या रस्म
0: निभाएंगे वो
1: निभाएंगे
2: निभाएंगे वो जिनसे दस्तार का एक पेच संभाला नहीं जाता।
0: फिर से
2: सरदेन की क्या रस्म
0: निभाएंगे वो जिनसे,
2: निभाएंगे वो जिनसे
0: दस्तार का एक पेच संभाला नहीं जाता।
2: दस्तार का एक पेच
0: संभाला,
2: संभाला नहीं जाता। हमसे गमे
0: शबीर संभाला नहीं जाता।
2: जब

0: خنجر سر و سامان میں,
1: سر و سامان میں ڈالا نہیں جاتا, ہم سے غم شفیع

0: सही सही,
1: हर घर की रिवायत नहीं है
0: जुल्म से लड़ना,
1: जुल्म से लड़ना, हर घर में शहीदों को तो हर घर की रिवायत नहीं है जुल्म से लड़ना, हर घर में शहीदों को तो पाला नहीं जाता, हमसे गमे शबीर

0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हर घर की रवायत नहीं है जुल्म से लड़ना, हर घर में शहीदों को तो पाला नहीं जाता। जब सुलह की नीयत से निकलता है बहादुर, खंजर सरो सामान में। बहुत खूबसूरत सलाम हमें इनायत कर रहे थे जनाबे डॉक्टर शफक सोपोरी साहब। अब अगर इजाज़त दो तो मैं अपने सलाम के कुछ अशार अर्ज किया है, एक सलाम के कुछ शेर। ये जो सब हुस्न हुनर हर्फ व नवा रखते हैं हम,
2: बहुत अच्छे।
1: ये जो सब हुस्न हुनर हर्फ व नवा रखते हैं हम, ऐ शहीद करबला तेरी अता रखते हैं। ये जो सब हुस्न हुनर हर्फ व नवा रखते हैं हम, ऐ शहीद करबला तेरी अता रखते हैं हम। और ये शेर की मोजो गिरदाब बलाम है बादबानी के लिए, मोजो गिरदाब बलाम है बादबानी के लिए, आयते तथहीर जैनब की रिदा रखते हैं। मोजो गिरदाब बलाम है बादबानी के लिए, आयते तथहीर जैनब की रिदा रखते हैं हम। और बेनवाओं की कोई औकात ही क्या पूछना, बेनवाओं की कोई औकात ही क्या पूछना, हाँ बड़े हैं यूं कि दिल में गम भरा रखते हैं। बेनवाओं की कोई औकात ही क्या पूछना, हाँ बड़े हैं यूं कि दिल में गम भरा रखते हैं हम। और वक्त से कोई कहे जाकर कि हो अब बेनयाम, वक्त से कोई कहे जाकर कि हो अब बेनयाम, अपनी रग रग में लहू आशूर का रखते हैं। वक्त से कोई कहे जाकर कि हो अब बेनयाम, अपनी रग रग में लहू आशूर का रखते हैं हम। और एहतजाज जुल्म या तशहीर हक के वास्ते, एहतजाजे जुल्म या तशहीर हक के वास्ते, बेमुहाबा मजलिसो मातम रवा रखते हैं। एहतजाजे जुल्म या तशहीर हक के वास्ते, बेमुहाबा मजलिसो मातम रवा रखते हैं। एक और सलाम के कुछ अशआर। ऐ इब्ने अली जोत जला तेरे लहू की, ऐ इब्ने अली जोत जला जोत जला तेरे लहू की, महसूस हुई सबसे जुदा तेरे लहू। ऐ इब्ने अली जोत जला तेरे लहू की, महसूस हुई सबसे जुदा। और हर रोज लिए शबीब साहब, हर रोज लिए कश्मकशे तेगो गुलू सी, हर रोज लिए कश्मकशे रोज तेगो गुलू सी, खिलती है सरे शाम हिना तेरे लहू की। हर रोज लिए कश्मकशे तेगो गुलू सी, खिलती है सरे शाम हिना, हर याद हुई खत्म बजुज याद मुहर्रम, हर याद हुई खत्म बजुज याद मुहर्रम, कायम रहेगी गूंज सदा तेरे लहू की। और जिस समत में शफक साहब, जिस समत में पानी का तस्वुर भी न होवे, जिस समत में पानी का तस्वुर भी न होवे, अफसोस तरावश है रवा तेरे लहू की। जिस समत में पानी का तस्वुर भी न होवे, अफसोस तरावश है रवा तेरे लहू की। और आखिरी शेर की, पुर नूर

0: पीनों में मचलते हुए सजदे,
1: नूर
0: जबीनों में मचलते हुए है दादो दहिश और अता तेरे लहू की, ऐ इब्ने अली जोत जला तेरे लहू की, महसूस हुई सबसे जुदा। हमारे बुजुर्गान अदब में जनाब मोहम्मद अशरफ नाज़िर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, माशाल्लाह सआदतमंदी हासिल करते रहे हैं इन महफिलों में, तो आज भी तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अशरफ नाज़िर साहब आपसे कि अपना सलाम अकीदत बहुज़ूरे सरकारी शहादत पेश करने की सआदत हासिल करें।
2: अरे कुर्बाई अर्ज़ है, हुक्म खुदा है उनकी मवद्दत करो बहाल, उनकी मवद्दत करो बहाल, अहकाम मुस्तफ़ा का रखो हर घड़ी ख्याल, अहकाम मुस्तफ़ा का रखो हर घड़ी ख्याल, अरफा है शान आले नबी दो जहान में, अरफा है शान आले नबी दो जहान में, मैं और मदह हजरत शब्बीर क्या मजाल,
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर पढ़िए बहुत अच्छा।
2: हुक्मे खुदा है उनकी मवद्दत करो बहाल,
0: मवद्दत करे
2: अहकाम मुस्तफ़ा का रखो हर घड़ी ख्याल, अरफा है शान आले नबी दो जहान में, मैं और मदह हजरत शब्बीर
0: क्या मजाल। सुभान अल्लाह सुभान
3: अल्लाह।
2: अब कुछ अशआर अर्ज़ हैं। वहदत को इख्तियार किया वो हुसैन है, वहदत को
0: इख्तियार किया
3: वो हुसैन है,
2: सब कुछ वही निसार किया
0: वो हुसैन है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुछ वही निसार किया।
2: नाना ने कह दिया उन्हें सरदार अहले खुल्द,
0: नाना
2: ने कह दिया उन्हें सरदार अहले खुल्द, खुद दोष पर सवार किया वो हुसैन,
0: बहुत अच्छा,
2: खुद दोष पर सवार किया
3: वो हुसैन।
0: फिर पढ़िए फिर पढ़िए।
2: नाना ने कह दिया उन्हें सरदार अहले खुल्द,
0: खुद दोष पर
2: सवार किया
0: वो हुसैन
3: है।
2: सींचा है जिसने खून से ये बागे ला इलाह, सींचा है जिसने खून से ये बागे ला इलाह, सहरा को लालजार किया
0: वो
3: हुसैन।
2: हुलकूम में कांटे हैं पड़े प्यास के मारे, हुलकूम में कांटे हैं पड़े प्यास के मारे, तब सब्र इख्तियार किया
0: वो हुसैन,
2: तब सब्र इख्तियार
0: किया
3: वो हुसैन है।
2: आदा की अकल का तो दिया बुझ ही चुका था, आदा की अकल का तो दिया बुझ ही चुका था, उस पर भी इंतजार किया
3: वो हुसैन है,
2: उस पर भी इंतजार किया।
3: क्या पढ़िए?
2: आदा की अकल का तो दिया बुझ ही चुका था, उस पर भी इंतजार किया
3: वो हुसैन है।
2: बर इन हिदामी शरीफ साहब, बर इन हिदामी दीन हक खंजर बदस्त थे,
0: बर
2: इन हिदामी दीन हक
0: खंजर
2: बदस्त थे, पर हक को उस्तवार किया
3: वो हुसैन है।
2: मख्तार हैं तौसीफ़ अहले बैत की तहरीर के लिए, तौसीफ़ अहले बैत की तहरीर के लिए नाज़िश को इख्तियार किया
3: वो हुसैन है,
2: वहदत को इख्तियार किया वो हुसैन
3: है,
2: सब कुछ वहीं निसार किया
3: वो हुसैन।
0: सुभान अल्लाह जनाब मोहम्मद अशरफ नाज़िर साहब अपना पुरखलूस सलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं जनाब सुल्तानुल हक शहीदी साहब आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दावत अकीदत गुजारी कबूल फरमाएं। जनाब सुल्तानुल हक शहीदी साहब
4: नाज़िर है बारगाह शहादत पना में, चंद कदात अकीदत के वो नज़्म ज़ब्त का सब्र व रज़ा का पैकर है, वो नज़्म ज़ब्त का सब्र व रज़ा का पैकर है, जिलों में साथ लिए जो खुदाई लश्कर है, वो नज़्म ज़ब्त का सब्र व रज़ा का पैकर है, जिलों में साथ लिए जो खुदाई लश्कर है, चले भी आओ जो दावा है हक परस्ती का,
0: चले भी आओ
4: जो दावा है हक परस्ती का, ये देख लेंगे कि हक किस तरफ का यावर। अर्ज है खलील इश्क के आगे शुको है आज़र है, खलील इश्क के आगे शुको है आज़र है, भरी बहार है فصل سنان خنجر ہے،
0: بھری بہار ہے،
4: فصل سنان خنجر ہے۔

0: देख दर्द की दौलत लुटाने कौन आया,
1: वो देख
0: दर्द की दौलत लुटाने कौन आया, जो बहरे ज़ीस्त का हर दौर में शिनावर है। दर्द की दौलत लुटाने कौन आया, जो बहरे ज़ीस्त का हर दौर में शिनावर है। एक मिश अले तस्लीम रजा है तुम्हारी जात, एक मिश अले तस्लीम रजा है तुम्हारी जात, ऐ फातिमा के लाल तू है दीन का सबात। एक मिश अले तस्लीम रजा है तुम्हारी जात, ऐ फातिमा के लाल तू है दीन का सबात। जुल्मत कदे में दहर के है तू पया में सुख, जुल्मत कदे में दहर के तू है पया में सुबह, है मसदर हयात तेरा वाकिए ममात, है मसदर हयात तेरा वाकिए ममात। मशगूल कार गो के सभी अहल शाम थे, मशगूल कार गो के सभी अहल शाम थे, और शाम के यजीद बसद एहतिशाम थे। दिन दाढ़ है करबला में यहाँ डूबा है आफताब, सजदे में चांद और सितारे तमाम थे, फर्श नमनाक अर्श भी नमनाक सीना हर दर्द मंद का है चाक, फर्श नमनाक अर्श भी नमनाक सीना हर दर्द मंद का है चाक। पाक मासूम खास हक वाले सामने उनके झुकते हैं अफलाक,
2: सामने उनके झुकते हैं अफलाक।
0: सदा बातिल हुआ है हक से बरहम,
3: बातिल हुआ है हक से बरहम
0: वो हक है जो नहीं होता है सरखम, वो हक है जो नहीं होता है सरखम। हुआ है जज्ब खूने पाक इसमें, है खाके करबला जख्मों का मरहम। हुसैनी मदरसा कहते हैं इसको, हुसैनी मदरसा कहते हैं इसको जो दरसे दीस देता है जहां, हुसैनी मदरसा कहते हैं उसको जो दर से जीस देता है जहां को। सदाकत वो लहू की धार है धार, सदाकत वो लहू की धार है धार, गिरे धरती पे छूले आसमान को। सदाकत वो लहू की धार है धार, गिरे धरती पे छूले आसमान को।
2: जज़ाकल्लाह जनाब सुल्तान हक शहीदी साहब। अब मैं एक और अपने बुजुर्ग दोस्त मशाक शायर जनाब हमदम कश्मीरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो हुसैन और अंसारी हुसैन की खिदमत में अपना सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब हमदम कश्मीरी,
4: चंद अशआर नज़्र हुसैन अलैहिस्सलाम। अर्ज़ किया है पुर असर है बहुत बयाने हुसैन, पूरा असर है बहुत बयाने हुसैन, है जुबाने नबी जुबाने हुसैन।
2: पूरा असर है बहुत बयाने हुसैन है जुबाने नबी जुबाने हुसैन।
4: आओ जी जान से करें मातम और जमा है सारे आशकाने हुसैन। आओ जी जान से करें मातम और जमा है सारे आशकाने हुसैन। और जर्रा जर्रा लहू लहू खुशबू,
2: जर्रा
4: जर्रा लहू लहू खुशबू,

0: सूखे होठों पर, मतलब पेश कर रहा हूँ कि सूखे होठों पर दुआओं की रवानी या हुसैन, सूखे होठों पर दुआओं की रवानी या हुसैन, दे गई इस्लाम के गुलशन को पानी या हुसैन, अज़्मो इस्तिक़लाल में हैदर के सानी आप हैं, सब्रो अज़्मो इस्तिक़लाल में हैदर के सानी आप हैं, आपका लेकिन नहीं है कोई सानी या हुसैन, और खूने दिल से हक के चेहरे पर लिखा है आपने, खूने दिल से हक के चेहरे पर लिखा है आपने, फतह मंदी कामयाबी
1: बुलंद हुर का मुकद्दर बनाने वाला वो था, खाके तीरा मुनव्वर बनाने वाला वो। बहुत खूबसूरत और हमारी तारीफ से बाहर ये सलाम हमें इनायत कर रहे थे जनाब शबीब रिज़वी साहब। तो आज के अकीदत गुजारों के नाम में फिर सामईन के गोश गुजार करूँगा, जनाब अशरफ आदिल, जनाब कमर हसन कासमी, जनाब परवेज मानूस, जनाब हसन अंजर, जनाब मोहम्मद अशरफ नाजिश, डॉक्टर शफक सोपोरी, जनाब सुल्तानुल हक शहीदी, जनाब हमदम काश्मीरी, जनाब डॉक्टर सैयद शबीब रिज़वी और ये खाकसार सैयद रज़ा भी। आज के
2: जी समीन आप समझ कर रहे थे हुसैनी मुशायरा, ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियो में 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सपहर के 3:50 हो रहे हैं, अब यहाँ से उर्दू खबरें नश्र होंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं सैयद मुबशिर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। आशूरे मुहर्रम के सिलसिले में वादी भर में आज़ादारी के जुलूस बरामद, अकीदतमंद कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तई मोहब्बत का इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बिहार कानून साज असम्बली के स्पीकर और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तालीम के साथ मुलाकात, बाहमी मफादात के मामलात पर हुआ तबादले ख्याल, और मुनशियात मुखालिफ बैनुल अक़वामी दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। आज आशूरे मुहर्रम है, इस सिलसिले में वादी खासतौर से शिया आबादी वाले इलाकों में आज़ादारी और जुलजनाह के जुलूसों का बरामदगी का सिलसिला जारी है।

0: उत्तर वही है और वही हमारे लिए ठीक रहेगा।
1: कोऑपरेशन की वजारत की जानिब से श्रीनगर में सहकार से समृद्धि विजन से जमीनी हकीकत तक के मौजू से आठवीं दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज भारत के कोऑपरेटिव के शोबे के मुस्तकबिल के विजन और नक्शराह पर गौरखोज करने के लिए जमीनी तजुर्बात और हकीकी हालात को बुनियादी सतून करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी फेडरेशनों से कहा गया कि वह मुख्तलिफ स्कीमों के लिए रियासती सतह के मुताबिक मनसूबे तैयार करें और उनके नफाज की बाकायदा निगरानी यकीनी बनाएं। मरकजी सरकार ने सनतों और कमर्शियल सार्फीन को एक बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लेवल मगरबी एशिया की बहरानी सूरत हाल से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। एक बयान में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि एलपीजी की बल्क सप्लाई बहरानी सूरत हाल से पहले की 50% हद तक बहाल की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 28 तारीख को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 135वीं किस्त होगी। प्रोग्राम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। प्रोग्राम को AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। सरकार ने पासपोर्ट की इजराई के लिए दरख्वास्त की फीस में इजाफा कर दिया है। वजारत खारजा की एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट की इजराई की फीस अब 5,000 रुपये होगी, जबकि मामूल के तहत इजरा किए जाने वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। फीस की नई शरहों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 4 बज चुके हैं। अब नशर होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजारती वक्फा।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शबीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और संसारियों को अदब ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जे तुस सारे खैर खरीद नाल हो। सामीन एक हदीस मुबारक है, मन वस्सा अला अयालिही फी यौम आशूरा वस्सा अल्लाह अलैहि सन्नत कुल्लहा। जेड़ा शख्स आशूरा दे त्याड़े अहलो अयाल वास्ते रिज़्क बिच वादा करदा है, अल्लाह ताला पूरे साल इस वास्ते रिज़्क बिच वादा करसी। सामीन आज 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है, ए दिन बड़ी अजमत वाला दिन है। इसी त्याड़े हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहु ते अहलो अयाल ते साथी यजीदी लश्कर नाल हक दा दिफा करदियां करदियां भुखे ते दरियाए मैदान करबला बिच शहीद होए। ए उल्ला जवाल शहादत है जिस सुन हक परस्तां को कयामत तिकर हक तय कायम रहने दा दर्स दिता। यजीद दे अंजाम बद सुन हक को फतह अता की थी और यजीद को निशाने इबरत बढ़ा छुड़िया। सामीन आओ प्रोग्राम दे शुरू भी सुन दिया ए नात शरीफ पेश कर सन मुर्तजा बुखारी।

ਵਸ ਬੇਰੀਆਂ ਪਿਆ ਬਸਾਖ ਚੜਿਆ ਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਪਾਣੀ।

ओ मुल्की होरमल ने मारे आ तीर फोरन आखे ले हुण पी तू नादान पानी। जुल दूर हो अबर बहार ए तू कुरे और जा जा बरसा पानी। जुल दूर हो अबर बहार ए तू कुरे और जा जा बरसा पानी। ओ जादू

0: मनोज सिन्हा सुन आखा जे गैर यकीनियत ते इस दौर बिच ए यात्रा असा को कसरत बिच वहादत दा सुनिया देंदी है।
1: श्री अमरनाथ यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन पहलगाम बिच यात्रा दे नंदमंद बुनियादी कैंप दा दौरा करके उत्थे शरधालियां वास्ते कीते गए इंतजामां दा मौके उत्ते तफसीली जायजा कीता। खेड कूद दे वजीर सतीश शर्मा सुन चंदनवाड़ी दा दौरा करके उत्थे यात्रा 2026 दे सिलसिले बिच कीते गए इंतजामां दा जायजा कीता। उन्होंने सुन कश्मीरी पंडित कॉलोनी वेसू बिच कराई गई एक खेड यूनिट बिच शिरकत कीती। बिहार की कानून साज असैंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ते हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित ठाकुर सुन कल श्रीनगर बिच वजीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मुलाकात की थी। उमर अब्दुल्ला ते डॉक्टर प्रेम कुमार सुन बिहार ते जम्मू कश्मीर के बचकार बाहमी तालुकात ते सांझे मफाद के कई मामलों उत्ते तबादले ख्याल किया। हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम के नाल एक कनी मीटिंग के दौरान वजीर आला सुन तालीम के शोबे बिच इदारा जाति शराकतदारी के इमकान उत्ते तबादले ख्याल किया। इस मौके उत्ते वजीर तालीम सकीना यीतू ते दुई कई शख्सियात भी मौजूद आसियां। तालीम दी वजीर सकीना यीतू सुन पिछले 2 सालों के दौरान शोबे तालीम बिच हासिल कीते गई दियां कामयाबियां को सामने आंदियां आख्या जे सरकार बराबरी के मौके ते इदारियां बिच नवापन आंदियां म्यारी तय शमूलियाती तालीम की फराहमी यकीनी बनाने वास्ते पुरअज़म है। श्रीनगर बिच हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित ठाकुर के नाल गल करदियां गलबात के दौरान सकीना यीतू सुन आखिया जे इख्तरा ते टेक्नोलॉजी को सामने आंदियां शोबे तालीम को मजीद कामयाबियों नाल हमकिनार किया गया सी। दोनों वजीरां सुन तालीमी शराकतदारी को मजबूत करने उत्ते गलबात की। ये खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर थी सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ते DTH उत्ते भी सुन सकते हो। अज मुनशियात मुखालफ बैन अल-अक़वामी ध्याड़ा है। इस ध्याड़े का मकसद मुनशियात के इस्तेमाल ते इसके कारोबार के मनफी ते मुज़िर असरों के बारे में जानकारी आम करना है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन सुन मुल्क बिच इस बिदत के खात्मे वास्ते सांझी कोशिशों की लोड़ उत्ते जोर दिता। नवी दिल्ली बिच नारको कोआर्डीनेशन सेंटर की 10वीं मीटिंग नाल खिताब करदिया वजीर दाखिला अमित शाह सुन आख्या जे सरकार मुल्क को इस लानती पाक करालने वास्ते पुरअज़म है।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीत।
0: अज की तैयारी की मुनासबत नाल नौजवानों के अमूर ते खेड कूद की मरकजी वजारत माए भारत पोर्टल उत्ते नशा मुक्त क्विज लांच कर रही है। जम्मू कश्मीर को मुनशियाती लानत थी छुटकारा दिलाने वास्ते 100 त्याड़ियां उत्ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां तेजी नाल जारी हैं। मुनशियात के खिलाफ LG का सुनिया।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत उत्ते काबू करने वास्ते दरकार इकदाम ते लोगों की जिम्मेदारियों के तालुक नाल रिगल लैंड श्रीनगर के ट्रेडर्स यूनियन के सदर शौकत अहमद भट्ट सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करदियां आख्या।
3: मंशियात का यहाँ पे बड़ा उरूज है, खासकर हमारे कश्मीर में। मेरी तो यही गुजारिश है नौजवानों से कि ड्रग्स से दूर रहो, अपनी जिंदगी को संभालो, अपना फ्यूचर देखो। और हमारा पुलिस J&K ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनसे भी काफी गुजारिश है कि इस पे आप बराबर देखरेख रखें ताकि इसको हम जड़ से उखाड़ दें। हमारे लिए बेहतर वही है और वही हमारे लिए ठीक रहेगा।
0: वजारत तावन की तरफों श्रीनगर सहकार से समृद्धि विजन

0: हम गल कर रहे थे ना अशुरा की, एक तो युग के करबला के जानसारों को सलाम। मैदान करबला शायद दुनिया को वाहिद मैदान है जित एक अजीम बाप ने अपने लख्त जिगर और दीगर अजीज व अकारिब ना बड़ी बेदर्दी के नाल कत्ल होता हुआ देखियो। ये वो वाहिद मैदान है जित ख्वातीन ने अपनी सुहाग जड़े वो जुड़ता हुआ देखा, न मजलूम जुड़े और न शहीद की होगी और न जुल्म की होगी। इससे हमारा सबक मिले कि हक के नाल हमेशा रहना चाहिए, बातल के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, कदे जो आपका सिर जुड़ा वो कदे झुकाना नहीं चाहिए। ये हमारा को लगे बड़ा खूबसूरत रिकॉर्ड कियो कियो हुसैनी मुशायरा है, मुशायरा की सदारत जड़ी है वह मोहम्मद मुंशा हकी और की है, जो मुशायरा हमने आर्काइव से पढ़ी है। कलाम सुनते बाद जिसकी जड़ी तरतीब हमने लब है उस्मान सईद सिकंदर वफा साहब साबर जानी बिजरान साहब मोहम्मद रफीक जख्मी साहब अब्दुल मजीद हसरत साहब मोहम्मद इदरीस शाह मोहम्मद मुंशा हकी साहब और अपना कलाम पेश करेंगे। आओ यो मुशायरा सुन लें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज का हुसैनी मुशायरा में जरा शुरा हजरात शिरकत कर रहे हैं उनका इस्माए ग्रामी इस तरह है, जनाब मोहम्मद मुंशा खाकी साहब, जनाब मोहम्मद इदरीस शाह साहब, जनाब साबर विजरान साहब, जनाब सैयद सिकंदर वफा साहब, मोहम्मद रफीक जख्मी साहब, तखाकसार अब्दुल मजीद असरत। आज का मुशायरा का शुरू में हूँ दावत सुखन दूंगा सैयद।

0: गूंजे गो सारा जग मतरानो हुसैन को, इस्लाम ना या जिंदगी बख्शी हुसैन ने, मोमिन ना खास बंदगी बख्शी हुसैन ने।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: इस्लाम

0: हक की लड़ी लड़ाई बातन अगे न चुके आ कुफर शिरक नसावे शहादत हुसैन की। आखिरी शेर है जी, शहादत हुसैन शाद सच्चाई को दर्श दे, शहादत हुसैन शाद सच्चाई को दर्श दे, नफरत की आग बुझावे शहादत हुसैन की। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मोहम्मद इदरीस शाह साहब। तो हूँ मुशायरा का आखिर में हूँ, आज का मुशायरा का सदर तो गोजरी का नामवर शायर जनाब मोहम्मद मनशा खाकी साहब ना गुजारिश करूँगा कि वे अपना कलाम ते नवाजे।
2: छोटी बैर का त्राय शेर, सच्चा दीन की डाई बने हो, रैबर बने हो राई बने हो, सच्चा दीन की डाई बने हो, रहबर बने हो राई बने हो, सब कुछ आप लुटा के अपनों, जख्मी साहब सब कुछ आप लटा के अपनों, मेरा दीन की साई बने हो, सच के बांधे कूड़ न खलियो, सच के बांधे कूड़ न खलियो, हक कुफर की फाई बने हो, सच के बांधे कूड़ न खलियो, हक कुफर की फाई बने हो, सच्चा दीन की डाई बने हो, रहबर बने हो राई। ए दूत्रा बंद बंदे अर्थ

0: क्योंकि करबला को सुन के हर इंसान रोतो देखियो, करबला को सुन के हर इंसान रोतो देखियो, हेर के इस जुल्म ना आसमान
1: रोतो।
0: करबला को सुन के हर इंसान रोतो देखियो, हेर के इस जुल्म ना आसमान रोतो देखियो, आदमी ते आदमी हैवान रोतो देखियो, हर गुलाम रोगियो सुल्तान रोतो देखियो, हक परस्ती सरपरोशी आदत मेरा हुसैन की, मार गई यजीद ना शहादत मेरा हुसैन, हक परस्ती सरपरोशी आदत मेरा हुसैन की, मार गई यजीद ना शहादत मेरा हुसैन की, वो काफरां को दबदबो मगरूर सारा एक तरफ, वो काफरां को दबदबो मगरूर सारा एक तरफ, तकबरी की इंतहा वे गरूर सारा एक तरफ, मासूम था मजलूम था मजबूर सारा एक तरफ, लश्कता चेहरा वे नूर सारा एक तरफ, उन बुजदुला ने सोची थी हलाकत मेरा हुसैन की, पर मार गई यजीद ना शहादत मेरा।
2: बेशक बेशक, क्या बात
0: है। दो बंद और के कातलाना कत्ल करनो और महंगो पै गयो, कातलाना कत्ल करनो और महंगो पै गयो, साजिशी सामान सारो उत्ते तरियो रह गयो, साजिशी सामान सारो उत्ते तरियो रह गयो, फता याबी को किलो फिर पल कड़ीमा ठह गयो, फता याबी को किलो फिर पल कड़ीमा ठह गयो, दीन हक के सामने गरूर तरती लह गयो, जलील ख्वार कर गई अदाबत, जलील ख्वार कर गई अदाबत मेरा हुसैन की, मार गई यजीद ना शहादत मेरा हुसैन की, हक की आवाज थी वह दो जहां तक गई, हक की आवाज थी वह दो जहां तक गई, करबला की कूक थी वह आसमान तक गई, हक की आवाज थी वह दो जहां तक गई, करबला की कूक थी वह आसमान तक गई, इंसाफ की पुकार व अल्लाह की शान तक गई, हर समाप तक गई व हर जबान तक गई, मनशा तें भी देख ली ताकत मेरा हुसैन, मनशा तें भी देख ली ताकत मेरा हुसैन जी, मार गई यजीद ना शहादत मेरा हुसैन।
1: मार गई यजीद ना शहादत मेरा हुसैन की। ये था जनाब मोहम्मद मनशा खाकी साहब। तो इसके नाल ही मुशायरा ख़त्म हुआ। आज का मुशायरा में जिहड़ा शोरा हजरात शिरकत कर रहा था उनका इस्माई ग्रामी एक बार फिर दस्ती हूँ। जनाब मोहम्मद मनशा खाकी साहब, जनाब मोहम्मद इदरीस शाद साहब, सैयद सिकंदर वफा साहब, साबर जानी बिजरान साहब, मोहम्मद रफीक जख्मी साहब, ते नाचीज़ अब्दुल मजीद हसरत।
3: तराना हुसैन दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन को, तराना हुसैन सईद सिकंदर वफा, सच्चा दीन की डाई बनियो, रहबर बनियो राई बनियो, सब कुछ आप लुटायो अपनो, सब कुछ आप लुटायो अपनो, मेरा दीन को साई बनियो। यो नातिया मुशायर हमने सुनियो, शोरा हजरात ने इसमें शिरकत की। एक बार फिर उनका नाम सईद सिकंदर वफा, साबर जानी बिजरान, मोहम्मद रफीक जख्मी, अब्दुल मजीद हसरत, मोहम्मद इदरीस शाद, मोहम्मद मुनशा हाकी जड़ा के मुशायरे की सदारत कर रहा था। आगे हमारा कुल नात शरीफ है मोहम्मद इकबाल मलनगामी की आवाज में। अब यह नात सुन लेना।

0: इसके नाल ही मारा प्रोग्राम को विलंब के प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी तमना दियो जाज अच्छा जी रब राखो
1: समय आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे जाकिर हुसैन माविन शाइस्ता यतु प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी
2: ने कहा खुशी है बहरहाल खाकसार तुमसे जो सौ पिसर हूं तो इस राह पे निसार पर मैं न दूंगा रुखसते मैदान कारजार इस अम्र में तुम्हारी पुफी को है इख्तियार राजी हूं वो तो दाग उन्हें देके जाइए पाला है जिसने उसकी रजा लेके जाइए रोकूंगा मैं तुम्हें ये न कीजो कभी ख्याल साबिर खुदा की राह में है फातिमा का लाल सदके है नूर ऐन तसद्दुक है जानो माल तिफलो जवानो पीर का हाफिज है जुल जलाल
1: मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है समय शाम के

0: 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम का 5:50 हुए हैं। उनतम गोजरी में खबर सुनो। पहला अहम खबरों की सुर्खी। आशुरा मुहर्रम का सिलसिला में वादी बर में आजादारी का जुलूस बरामद। अकीदतमंद कारनियाए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते मोहब्बत को इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्री अमरनाथ जी यात्रा वास्ते इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बिहार कानून साज असम्बली का स्पीकर और हिमाचल प्रदेश का वजीर तालीम का नाल मुलाकात। बाहमी मुफाद का मामला पर तबादला ख्याल। तय मुनशियात मुकाल बैन अवी त्याड़ो आज उन पेश है खबरों की तफसील। आज आशूरा मुहर्रम है। इस सिलसिला में वादी खास तौर तो शिया आबादी इलाका में आजादारी और जुलजिना का जुलूसों को इनका जारी है।

0: وقف کیے ہوئے وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کیا گیا ہے کہ تتکال اسکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی فیس لین 5,000 روپیہ ہوئے گی، جبکہ معمول کے تحت اجرا کیا جان والا پاسپورٹ کی فیس 3,500 روپیہ ہوئے گی۔ تے اس کا نالی گوجری خبروں کو یو بلٹن موقع دیوں اجازت، اللہ حافظ۔
1: سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ گرہ منتری امیت شاہ نے نشے کے خلاف ایک جٹ ہو کر یدھ چھیڑنے کا آہوان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مادک پدارتھوں کا کاروبار دیش کی سرکشا، ساماجک ویوستھا، آرتھک ہتوں اور یوواؤں کے بھوشیہ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ آج نئی دلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی بیٹھک میں انہوں نے آدھیاتمک نیتاؤں، یوواؤں اور ماتاؤں سے اس ابھیان میں مل کر شامل ہونے کی اپیل کی۔
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے، آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے۔
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर

0: गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर शबीजत 5 मिनट समर्पित पेश प्रोग्राम गर्मी बाई नींद खतर।
2: जुबैर सर अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: تو چھو ٹھیک پٹھ
3: الحمد للہ
2: ساری حمد ثنا خدا وندی کریمس کنت اس غفور الرحیم اس انسانس یا دنیا انت پتہ ہر وز پریت کان چیز

0: आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जी पठन प्रत जाय विकनस प्रत कुने दिलस मज मातम।
2: बिल्कुल,
1: तिकाज गरे तिसै दोहै तुथै वाकै तुथै एतन जन इंसानस वाकै ये सरखम पे वाच करुन। तिकाज कितकन आय अथ मैदान करबलस मज कोता जुलम आव करन, मौसमन आय त्रेश बंद करन, नाक बंदी आय करन, तन तनह आव ये कहलो त्रावन, तेरह हज बारिश आय करन, तो दह महरम ये जन इमाम हुसैन अलैहि सलाम हाँ अथ मैदान करबलस मज नेरान छु, तो पत कित कन छ अतन जुलम यवान करन, तेरह हज बारिश यवान करन, मगर ये वेतरावान ते मगर अथ अलम न दिवान पत्थर पे नहीं
2: पत्थर पे नहीं
1: तिकाज ये अस हकच अलम ये अस गोड़े बुलंद करमज टट नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम अथ मैदानस मज यमो शेर खारो ते पनो रोल अदा कोर, यमो माजो बनो कोता सबर कोरक, कोता जुलम आव करन वाहिमा कोरक, तो अथ करबलास मज क्या रोल रोद इवन हुंद अमिच बावत कर अकिस कत बात मज मुकर्र
2: इम्तियाज अंजुम।
3: सानह करबला चु आलमी तवारीख सु नाकाबिल फरामोश वाक यम आलम इंसानियत बिलूम तो आलम इस्लाम बिलखसूस इज़त वक़ार तो सर बुलंदी अता कर तो यम दीन इस्लाम सुरखरुई अता कर हक तो बातिल अलग कुर आशुरा चु सब्र इस्तेकामत शफ़क़त सिलाए रहमी जज़्बा शहादत शुजात सखावत अदालत तकवा इबादत अमर बिलमारूफ तो नहीं अनिल मुनकर हिवन आला इंसानी तो इस्लामी अकदारन हज दावत दिवान तो सती चु प्रत जमानस मज तो प्रत जाए जुल्म ज्यादती तो नाइंसाफी खिलाफ आवाज तुलनच हिम्मत ते अता करान। मकतब करबला के रोशन गोशो मज अहम तो नुमाया पहलू ये जि अत प्रत एकिस इंसानस खतर अख मिसाली नमून तो कह नह दर्स इबरत मौजूद। करबलास अंदर यम शख्सियात हकच तो तवहीद अलम तुलन किस जुर्मस मज शहीद या असीर करन आए तिम ऐस मुख्तलिफ मजहबन मसलकन कौमन कबीलन तो अलाकन सी तोलुक थावान कह जवान कह नौजवान कह उम्र रसीद बुजर्ग तो कह लोकट मौसूम शुर तो यमो सारवि कोर बहदरी तो वफादारी सान मैदान जहादस अंदर नवासए रसूल सैद शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिंद तरफ इस्लामस पेट पनुन जू कुर्बान। हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलामन येले 28 रजब सन 60 हिजरी मदीने पाक पेट पनुन सफर शुरू कोर तिमो तुल पानस सवित पनुन सोरु अहलो अयाल ते सिवाय पनिन अकूर फातिमा सुगरा यस एम विज मरीज अस इथे पट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिंदन अक्सर सथियन ते पनिन शुरी बोच करबलास मन सईत अवकिन उस अत जनानन हुन कम कास तेदाद ते मौजूद यमो पनिन मर्दन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते दीन हकच नुसरत करनस मज सठा हिमायत कर यदवे इस्लामी उसूलन तहत जनानों जंगी मैदानस मज शिरकत करन अमा पोज यमो बाशूर तो इताद गुजार जनानों यमि फिदाकारी वफादारी तो बुलंद किरदारुक मुजहिर कोर तमि किन छु तिहुंद रोल करबला किस तवारीखस मज बड़ अहम मानने यवान। मशहूर दुप छु जि प्रत एकिस कामयाब मर्दस पतकन छु कंसि जनानि हुंद अथ आसान यह जनान छ मोज बेनि खानदारिन या कोरि हिंदि शक्लि मज मर्द सिंद जिंदगी मुमकिन बनावान। बकौल अल्लामा इकबाल वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग कि उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दर्रू शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्ते खाक उसकी कि हर शर्फ है उसी दुर्ज का दुरे मकनू। यदवे इंसानी तवारीखस पेट नजर त्राओ प्रत कुन अहम तो खुश आइंद वाकस मज छु मर्दन सत सत मुख्तलिफ जनानन हुंद किरदार नुमाया तो थकुन लायक। इस्लामी तवारीखस मज छु वारियाहन जनानन अख खास मकाम हासिल यमन मज यम नाव काबिल जिक्र छ हज़रत हवा ज़ौजे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा व हज़रत हाजरा अज़वाजे हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुंज मौज आसिया अलैहिस्सलाम ज़ौजे फिरौन हज़रत मरियम मादरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो बिनत पैम्बर हज़रत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा। यमन सारनी जनानन पे खुदाए वहदहु ला शरीक सिंदन रिपीट यमन सारनी जनानन पे खुदाए वहदहु ला शरीक

0: अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं आशूरा मुहर्रम के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में मातमी जुलूसों का इनकाद, खाना बदोश गुजर बकरवालों को सेंसस से महरूम ना किया जाए गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का मुतालबा, और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया जालाबारी और तेज आंधियों से होने वाले नुकसान से किसान परेशान लेकिन सरकार खामोश, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इल्जाम। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
8: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
9: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
10: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान?
9: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
10: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावने यहाँ। विटामिन ए सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में।
9: मगर ये है सठा द्रोग?
10: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
11: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट तक।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
13: सेहत चु हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तिचु यु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिज कमी, यम चीज चु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान। मगर वन चु अत हल JK सेहत ऐप, यह तुहंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुनी तो जरूर तो ख्याल चु थावान। ये ऐप चु एंड्रॉइड तो आईफोन दोश्वनी मज दस्तियाब। यात ऐप मज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करिन, दवाहन हिज अवेलेबिलिटी चेक करिन, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करिन, ब्लड बैंक च मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी, बेच अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज,

0: उन्होंने आजादा रुसे इमामी हुसैन के कायम करदा असूलों पर चलने की तलकीन की ताकि हुसैनी निजाम का बोल बाला हो। इस दौरान इंतजामे की तरफ से तमाम किस्म के बेहतर इंतजाम मैसर रखे गए थे, जबकि पुलिस और सिविल इंतजामे के अला अफसरान जिनमें डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान, SSP KK हरी प्रसाद और MLA बड़गाम आगा सईद मुंतजर मेहदी व दीगर आला हुकाम ने अदादारों के जुलूस में शिरकत करते हुए हर तरह की सहूलियत का जायजा लिया। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह नियाज का एहतमाम किया गया था और खून के एटे के कैंप भी लगाए गए थे, जबकि यौमी आशरा के पेश नजर जिला हेडक्वार्टर पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इधर जिले के शिया आबादी वाले इलाकों से दर्जनों छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद होने की इतलात शहरबीन को मौसूल हुई है, जिनमें बीरवा ब्लॉक के इसगंदरपुरा, इशामा, अतना, मामगोड, हयातपुरा, वाइनहमा, मुलशला, बनहमा और निजलू, छत्रगाम ब्लॉक के शालिना और छत्रगाम, मागाम ब्लॉक के शिवपुरा, चायरा, वतमागाम, गगरपुरा, मानहमा, बाबापुरा और सोफीपुरा, डांगरपुरा, सोईबुक ब्लॉक के पाइमस, पांचस, खुशीपुरा, शरीफाबाद, वाहपुरा, लाहौरी चक और वामिरा, ब्लॉक बड़गाम के सिंधीपुरा, कारीपुरा, आबादपुरा, जोहामा और इचगाम, खाग ब्लॉक के मलपुरा, नसू और चाकरपुरा, जबकि ब्लॉक खान साहब के तालपुरा, बटपुरा, कुमरू और गतिपुरा व दीगर मुल्क का शिया इलाकों के बड़ी तादाद ने यौमी आशरा के जुलूस में शिरकत की, जबकि शिया आबादी वाले इलाकों में पुलिस दस्तों के अलावा महकमा हेल्थ के अहलकारों को भी तैनात किया गया था।
1: बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर चायरा पेटपुरा बड़गाम में आज अलीआबाद मस्जिद से दरगाह तालीमुल कुरान तक एक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल अजादारों ने करबला के शहीदों को मरसिया खानी और नहर खानी करते हुए याद किया। PDF के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना खिराज पेश करते हुए कहा है कि उनकी अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक परस्तों को हौसला अता करती रहेगी। दरियासा त्राल से शबीर भट्ट की इतला है कि पनीर जागीर त्राल में यौम आशूरा की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सैकड़ों आजादार शरीक हुए। इस मौके पर इमाम अली मकाम और उनके साथियों को दिली खिराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में रुकन असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक ने भी शिरकत की। गांधरबल से रहीम रिजवान की इतला है कि यौम आशूरा के मौके पर डब गांधरबल, नीलग्राट और बल्ती कुलन इलाकों में मातमी मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया गया, जिनमें हजारों अकीदतमंद शरीक हुए और नौखानी और मरसिया खानी करके करबला के शहदा को अपना खिराज पेश किया। इधर

0: एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
2: हाय, नमस्ते, मैं हूँ खुशी, आपकी टीबी साथी। पूछिए जो पूछना है।
3: टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं?
2: बताती हूँ।
3: ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है?
2: ये भी बताती हूँ।
3: और मेडिसिन लेना भूल जाऊँ तो?
2: रिमाइंड भी करवाती हूँ।
4: अब टीबी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, सपोर्ट और केयर सब कुछ आपके स्मार्टफोन में टीबी मुक्त भारत ऐप के साथ। यहाँ मिलेगी टीबी से जुड़ी हर जानकारी, नजदीकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर्स की लोकेशन, ट्रीटमेंट ट्रैकिंग और मेडिसिन रिमाइंडर्स और एक्सपर्ट गाइडेंस भी 24/7 बिल्कुल फ्री और कॉन्फिडेंशियल। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टीबी मुक्त भारत ऐप।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ज्यादा जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर कॉल करें या अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ट्यूबर क्लोसेस ऑफिसर डोडा, किस्तवाड़ एंड रामबन।
7: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। PDP के सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLA बटमालू इरफान अहमद शाह के वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान, बिलखसूस इरफान अहमद शाह से दिली ताजियत की है। सदन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज सोपोर और रफियाबाद के मुख्तलिफ देहात के दौरे के दौरान हालिया जालाबारी से हुए नुकसान के साथ साथ आबपाशी के फुकदान से मुरतब होने वाले असरात का जायजा लिया। मौसूफ ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा,
8: जमीन पर सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज जिस इलाके के मैंने दौरा किया इसमें तुजर शरीफ, जालूरा, लुगरीपोरा, हरवन एक बहत्तर एरिया है जिसका मैंने बहुत से देहात का दौरा किया। एक तो वहाँ जो सेंगड़ू कनाल की लैंड जो है, जो आबी लैंड जिसमें धान की फसल उगती थी, इरीगेशन की वजह से जल रही है, और वहाँ का जो इस एरिया का जो MLA है वो मिनिस्टर भी है और उस रास्ते से आता है, देख रहा है कि भी जमीन जल गई है लेकिन इरिगेशन की कोई फैसिलिटी पहली दफा नहीं हुई। पहली दफा इस सरकार में ये जमीन जल गई, वरने उनको सरकार जो पहली सरकारें होती थी उनको इरिगेशन फैसिलिटी दी जाती थी, ये एक अलमिया है। और इसके अलावा लकड़ीपोरा में एक वाटर टैंकर जो है वो बना हुआ है, सब कुछ मुकम्मल है अब, और नौपोरा कलान का भी यही हाल है, नौपोरा कलान सोपोर में है, मुकम्मल बन गया है, सिर्फ चालू करना है लेकिन नहीं हो रहा है। मैंने एक्शन से बात की, ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार है उसके कुछ 8-10 लाख बकायात है वो सरकार दे नहीं पाती, इसलिए ये दोनों वाटर टैंकर चालू नहीं हो रहे हैं और लोग पीने के पानी के लिए आहुकार कर रहे हैं। कहाँ है सरकार? और कि जिस तरीके से तालाबारी से जो तूफान हुआ इस इलाके में, रफियाबाद, सोपोर, जनगेर, सरकार कहीं नजर ही नहीं आती, कोई असेसमेंट ही नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बल्कि जो कंसर्न मिनिस्टर यहाँ का ही है, जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, उससे लोग मिले, वो कहते हैं नेट लगाओ। क्या लगाएंगे? तालाबारी हो रही है तो माओ के बागार को नेट लगाया जा रहा है। अनपढ़ लोग मिनिस्टर बने हैं, क्या विजन है? नेट लगाओ बागात में और बागात को बचाओ जालबारी से। कैसे लाख हजारों कुनाल की जमीन बागात बच सकती है, ये है विजन। उमरुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ, उमरुल्ला साहब अगर आपने लोगों को वोट लिए तो इसीलिए आप अपने सेक्ट्रेट में बैठ कर तमाशा

0: देखेंगे लोग कैसे मुसीबत का शिकार हो रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हो, लोगों का मसला क्यों हल नहीं कर रहे हो।
1: ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। सर, जम्मू कश्मीर में इन दिनों मरदमशुमारी का अमल शदोमत से जारी है। इस सिलसिले में अलबत्त खानाबदोश गुजर बकरवाल आबादी की शिकायत है कि उनकी मरदमशुमारी पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और लगता है कि वो सरकार की तरजीहात में शामिल हैं ही नहीं। जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने इस ताल्लुक से शहरबीन से बात करते हुए कहा।
2: बिल्कुल दुरुस्त है कि आज हमें भी बहुत सारे जगहों से फोन आए दूर दराज इलाकों में कि बहुत सारे जो खाने बदोश लोग इस वक्त डोको में अपने माल मवेशी के साथ गए तो उनकी अभी तक सेंसस नहीं हुई है। तो मेरी गवर्नमेंट से भरपूर ये मांग है कि इन लोगों के लिए स्पेशल कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि ये भी सेंसस में मर्दोशुमारी में लाया जाए, क्योंकि ये पिछली बार भी ऐसे हुआ कि सेंसस उस टाइम में होती है जब हमारे लोग डोको बैको में चले जाते हैं, तो नतीजतन कि हमारे बहुत सारे लोग जो छूट जाते हैं। मैं तो इस वक्त देखूंगा कि शायद 2-2.5 लाख लोग जो ऐसे हैं जो इस वक्त भी शिकायत कर रहे हैं, हर जगह दूर दराज एरिया से फोन आ रहे हैं कि जहाँ अभी तक हमारी सेंसस नहीं हुई है। मेरी यहाँ यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भरपूर मांग है कि एक बार इस मसले को देखा जाए और इन लोगों की पूरी सेंसस पूरे तरीके से सेंसस की जाए ताकि ये भी अपने अदादोशुमार में आ सके।
1: खानाबदोश गुजर बकरवाल आबादी की मर्दमशुमारी भी की जाए, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
3: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
4: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
5: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
6: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
7: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
8: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामज।
9: तो क्या इस शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावनी है। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में,
8: मगर ये है आज सठा द्रो।
9: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
10: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसैलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राबित।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनडी।
12: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो यह सफर वारियन लोकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन में हॉस्पिटल तो सही मालूमात कमी यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छ इथी रोजान, मगर वन छ अत हल JK सेहत ऐप। यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दुश्वनी मज दस्तियाब। ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन जानकारी, बेचे अत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तु मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या साध शहरी छो, JK सेहत छ सारनी सूथ, सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
13: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।
14: आदाब, यह आकाशवाणी सिरिनगर।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम में यात्रा के नुनवर बुनियादी कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम का बरसर मौका तफसीली जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी गीत वंदे मातरम के तख्लीककार बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आनजहानी की अदबी खदमात हुबुल वतनी और तहजीबी इफ्तिखार की जिंदा मिसाल है। बिहार की कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉ प्रेम कुमार और हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित ठाकुर ने कल श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला और डॉ प्रेम कुमार ने बिहार और जम्मू कश्मीर के माबैन बाहमी तालुकात और मुश्तरक मफाद के कई मामलों पर तबादला ख्याल किया। हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम के साथ एक अलहदा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने तालीम के शोबे में इदारा जाती शराकत दारी के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर तालीम सकीना इतू और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर एन एन वोहरा के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मामलों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज मनुष्यत मुखालिफ बैनुल अक्वामी दिन है। इस दिन का मकसद मनुष्यत के इस्तेमाल और उसके कारोबार के मनफी और मुजिर असरात के बारे में जानकारी आम करना है। नायब सदर जम्हूरिया CP राधाकृष्णन ने मुल्क में इस बिद्दत के खात्मे के लिए मुश्तरक कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरकार मुल्क को इस लानत से पाक कराने के लिए पुरअज़्म है।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीत।
0: आज के दिन की मुनासबत से नौजवानों के उमूर और खेलकूद की मरकजी वजारत माई भारत पोर्टल पर नशा मुक्त क्विज लॉन्च कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आवाम की शराकत दारी से नशा मुक्त भारत अभियान ने एक जामिया मुहिम की शक्ल अख्तियार की है। उन्होंने मनुष्यत से पाक विकसित भारत की तामीर को यकीनी बनाने में हर शहरी का ताउन तलब किया है। मनुष्यत मुखालिफ बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमें नौजवान नस्ल को इस बिदत से छुटकारा दिलाने के लिए अपने अज़्म का इरादा करना होगा। दरियास्ता जम्मू कश्मीर को मनुष्यत की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी है। मनुष्यत के खिलाफ LG का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के तालुक से रीगल लेन श्रीनगर के ट्रेडर्स यूनियन के सदर शौकत अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मनुष्यत का यहाँ पे बड़ा उरूज है, खासकर हमारे कश्मीर में। मेरी तो यही गुजारिश है नौजवानों से कि ड्रग्स से दूर रहो, अपनी जिंदगी को संभालो, अपना फ्यूचर देखो। और हमारा पुलिस J&K ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनसे भी काफी गुजारिश है कि इस पे आप बराबर देखरेख रखें ताकि इसको हम जड़ से उखाड़ दें। हमारे लिए बेहतर वही है और वही हमारे लिए ठीक रहेगा।
0: मनुष्यत मुखालिफ दिन की मुनासबत से जम्मू सूबे के राजौरी जिला में मनुष्यत मुखालिफ रैली निकाली गई, जिसकी कयादत नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मनुष्यत की बिद्दत का खात्मा समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है। राजौरी में मनुष्यत मुखालिफ वाकथान का भी एहतमाम हुआ, जिसको नायब वजीर आला ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मनुष्यत मुखालिफ बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में BJP जम्मू कश्मीर के एहतमाम से जम्मू में एक तकरीब मुनाकद हुई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने ड्रग फ्री यूथ एम्पावर्ड इंडिया के मौजू पर पार्टी की किताबचे की रस्म इजराई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईद दरख्शान द्राबी ने आज राजौरी में शाहदरा शरीफ के मुकाम पर बुलंद पाया वली बाबा गुलाम शाह बादशाह

जो दूसरे कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, तीसरी तकसीम बंदी सिनोसाल के लिहाज से और चौथी तकसीम बंदी वक्त शहादत के एतबार से। इस मुख्तसर सी गुफ्तगु में सभी अंसारान हुसैन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तज़किरा तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता नमूने के तौर पर बाज का जिक्र किया जाता है। अगर वक्त शहादत के एतबार से बात की जाए तो उन शहदा का भी तज़किरा करना होगा जिन्होंने करबला का वाकया अंजाम पाने से पहले ही शहादत पाई, जिनमें मोहम्मद इबन कसीर और उनके फर्जंद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई और कासिद मुस्लिम इब्ने अकील, कूफे में वारिद होने के बाद

बात की जाए तो उन शहदा का भी तज़किरा करना होगा जिन्होंने करबला का वाकया अंजाम पाने से पहले ही शहादत पाई, जिनमें मोहम्मद इबन कसीर और उनके फर्जंद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई और कासिद मुस्लिम इबन अकील, कूफे में वारिद होने के बाद जनाब मुस्लिम ने जो इकदाम किए थे उसे तारीख ने अपने सफ़ात में महफूज कर लिया है। वो हिम्मत व शुजात और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मनों से बरसर पैकार रहे, मगर उन्हें झूठी अमान देने के बाद 9 ज़िलहज सन 60 हिजरी को आलम ग़ुर्बत में शहीद करके उनकी मैयत को गवर्नर हाउस के नीचे फेंक दिया गया। इसके अलावा मुस्लिम के कमसिन बच्चे इब्राहिम और मोहम्मद, हाबिन बिन अरवाह मरादी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम सलमान इबन ज़रीन वगैरह वो अंसारान हुसैन हैं जिनकी शहादत करबला से पहले हुई। शहदाए बनी हाशिम में से अली इबन अल हुसैन, जो अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हैं, उनकी अजमत व मरतबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो रफ्तार व गुफ्तार व किरदार व सीरत व सूरत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबीह थे, और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ वालिहाना मोहब्बत रखते थे। ये वही अली अकबर हैं जिन्होंने आशूरा की सुबह 3 दिन तक भूखे प्यासे और थके मांदे होने के आलम में अजान दी, और यजीदी फौज को लगा कि सरजमीन करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंज रही है। उनकी शहादत उनके सीने में एक नेज़ा लगने से हुई। जाफर इबन अकील, अब्दुर्रहमान इबन अकील, अब्दुल्ला इबन अकील, मोहम्मद इबन अबी सईद इबन अकील, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दो बेटे आउन मोहम्मद, उबैदुल्लाह इबन अब्दुल्ला इबन जाफ़र, कासिम इबन मोहम्मद इबन जाफ़र इबन अबी तालिब, इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के 4 बेटे कासिम, अब्दुल्ला, हसन और अबू बकर इसी ख़ानदान के नामवर अंसारान हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल हैं। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के नौजवान फर्जंद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम करबला के नौजवान शहीदों में सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने कमसिनी के बावजूद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की नुसरत और हुसूल शहादत की खातिर उस हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया है जो करबला की तारीख का एक सुनहरा बाब है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो असहाब अंसारान इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम में शामिल होकर दर्जे शहादत पर फाइज हुए, उनमें से बाज ये हैं: अब्दुल्ला इबन अली, उस्मान इबन अली, जाफर इबन अली, अबू बकर इबन अली, मोहम्मद इबन अली, अब्बास असगर और कमर बनी हाशिम। हजरत अब्बास, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में इमाम अली मकाम के सिपह सालार थे और नहर फुर्रात से खयाम हुसैनी तक पानी लाने का काम अंजाम दे रहे, इसलिए सकाए करबला कहलाए। रोजे आशूर खुद प्यासा होने के बावजूद फुर्रात के पानी से एक कतरा पिए बगैर खयाम हुसैनी में प्यास से बिलकते बच्चों की खातिर पानी लाते हुए उनके दोनों बाजू कलम कर दिए गए। उन्होंने फुर्रात के किनारे शहादत पाई। तारीख उन्हें अब्बास बावफा के नाम से याद करती है। खानदान बनी हाशिम के शहदा की फहरिस्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह शीरखवार बच्चे अली असगर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल रह जाती है। इस शीरखवार बच्चे ने अपने मासूम से हलकूम पर हुरमला का तीर खाकर दुनिया को बतला दिया कि कमसिनी और शीरखवारगी के बावजूद भी अजीम कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं। कायनात आज तक इस शीरखवार की जिगर सोज और दिल दहलाने वाली शहादत पर खून के आंसू रोती आई है। वाकई करबला में जिन अंसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नुमाया कारनामे अंजाम दिए और अपने लहू से शहादत की तारीख रकम की, उनमें से बाज हजरात के असमाए ग्रामी यूं हैं: उमैया बिन साद, बशर बिन उमर, जाबिर बिन हुज्जाज, हबाब बिन आमिर, हारिस इबन इमरुल कैस, आमिर बिन मुस्लिम और उनके गुलाम सालिम, हबीब इबन मज़ाहिर के गुलाम जॉन, मसूद इबन हज्जाज, अब्दुल्ला इबन उमैर और उनकी जोजा उम्मे वहब, बुरैर हमदानी नाफे बिन बिलाल, जुहैर बिन कैन जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथियों में से एक थे, जब उन्होंने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के करबला जाने की बात सुनी ये भी उनसे जा मिले और करबला में शहादत पाई। वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी इमाम अली मकाम के वो जानिसार थे कि जिन्होंने शादी के फौरन बाद ही अपनी माँ और अपनी दुल्हन

0: जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी ही नहीं थी को लेकर करबला आए और जाम शहादत नोश किया। ये वही नासिर हुसैन हैं कि जिनकी माँ ने उनका कटा हुआ सर वापस मैदान कारजार की तरफ ये कहते हुए फेंक दिया कि हम जो कुछ खुदा की राह में देते हैं उसे वापस नहीं लिया करते। इसके अलावा हज़रत हुर का इसमें ग्रामी अंसारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाता है। ये वही हुर हैं जिन्होंने मुहर्रम सन 61 हिजरी की दूसरी तारीख को यजीदी फौज के कमांडर की हैसियत से इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबों से मुतासिर होकर यजीदी फौज से निकल आए और खयाम हुसैनी से जा मिले। करबला के मारके में खुद भी शहादत पाई और अपने जवासाल बेटे बुकैर की भी कुर्बानी देकर अंसारान हुसैन में शामिल हो गए। अंसारान इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम में सिन्नो साल के लिहाज से बुजुर्ग तरीन अफराद में से मुस्लिम इबन औसजा और हबीब इबन मज़ाहिर बहुत मशहूर हैं। ये दोनों कबीले बनी असद से ताल्लुक रखते थे। मुस्लिम इबन औसजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुजीदा असहाब में से एक थे। ये आहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायात और अहादीस नकल करते और मुसलमानों और अपने कबीले में इज्जत व एहतराम की निगाहों से देखे जाते थे। आशूरा के रोज लश्कर यजीदी की तरफ से पहले हमले में शहीद कर दिए गए। अपनी शहादत से कबल उन्होंने हबीब इब्न मज़ाहिर को वसीयत की थी कि इमाम को किसी भी हालत में तन्हा न छोड़ना। हबीब इब्न मज़ाहिर भी कबीले बनी असद से ताल्लुक रखते थे। वो कूफे के रहने वाले थे। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुजीदा साहब में से एक थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने दावती खुदूत लिखे थे उनमें से ये भी एक थे। ये आखिरी लम्हात तक इमाम के साथ ही रहे और दुश्मनान दीन के साथ लड़ते लड़ते 75 साल की उम्र में शहीद हो गए। इनका भी दूसरे शहीदों की तरह सर काट कर नेजे पर चढ़ा के शाम और कूफे में घुमाया गया। इसके अलावा और भी कई नाम अंसारान हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल हैं जिन्होंने इमाम की हल मिन नासिरिन यंसुरना की फरियाद को तहत शऊर में समझ लिया और इस आवाज़ के गूंजने से पहले ही नुसरत इमाम के लिए अपनी आमादगी का ऐलान किया था। कई तो वो हैं जो करबला जाना चाहते थे लेकिन कई वजूहात की बिना पर न जा सके। कुछ तो वो हैं जो करबला जाते हुए मारे गए और इस तरह से अंसारान हुसैन की सफ़ों में शामिल हो गए। अंसारान हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमारा सलाम हो जिन्होंने भूख और प्यास की शिद्दत में भी हक का दामन नहीं छोड़ा। हर तरह की कुर्बानी देकर भी इमाम से सवाल करते रहे, या इमाम क्या हमने वफा निभाई। बेशक ये लोग ईमान के आला दर्जे पर फाइज थे और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को खुशनूद कर दिया, जुल्म व इस्तबदाद की बातिल कुव्वतों को ललकारा और हमारे लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। ये वही लोग हैं जो मरते नहीं जिंदे जावेद होते हैं और इनकी अजमतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जहां सारी कायनात में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है और उनकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया जाता है, वहीं इन जानिसारों को भी इस अजमत व एहतराम व अकीदत से याद किया जाता है। ए औलियाए खुदा सलाम हो आप पर, ए खुदा के खास बंदो सलाम हो आप पर, ए दीन हक के पासदारो सलाम हो आप पर, ए रसूल के मददगारो सलाम हो आप पर, सलाम आपके सब्र व रज़ा पर और सलाम उस ज़मीन पर जहां आप दफन हुए। आपने सचमुच बड़ी कामयाबी हासिल की।
1: सामीन, आप समाप्त कर रहे थे तकरीर। मौजू था अंसराने करबला, रावी अब्दुल रशीद निज़ामी, तहरीर सईद सज्जाद हुसैन। आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। सामीन, आज जब हम योम आशूर मनाते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सोग मना रहे हैं, हमारे दिलों में वाकई करबला की याद ताज़ा हो जाती है। ये वो वाकई है जो हौसले का नाम है। ये तारीख इस्लामी का वो पुरसोग वाकई है जो कयामत तक बुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वसलाम अपने अजीज तरीन लोगों समेत शहीद कर दिए गए थे। ये वो ज़माना था जब यजीद ज़बरदस्ती खलीफा के अहदे पर फाइज हो चुका था

ये ऑल इंडिया रेडियो का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। समीन, करबला के मैदान में पानी को तरसाया जाने वाला हुसैन कोई आम शख्स नहीं था। हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अदा किए। हुसैन वो हैं जिनसे सुहाबे किराम अपने लिए दुआएं करवाया करते थे। हुसैन वो है कि इश्क इलाही में इस तरह की आहुजारी करते थे कि चेहरे अनवर पर आंसू बहने से लकीरें बन गई। हुसैन वो जिन्हें सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। हुसैन वो है जिन्हें फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सलाम करने में पहल फरमाया करते थे। हुसैन वो हैं जो तहज्जुद या कोई नमाज जनाजा अदा करने से कभी नहीं चूकते थे। हुसैन वो है जो 1400 गरीब घरों तक राशन अपने कंधों पर उठाकर पहुंचाया करते थे। और वही हुसैन और उनके रुफका शदीद गर्मी में भूख और प्यास से निडाल होने के बावजूद खुददारी और अज़्म के साथ मैदान में डटे थे। यजीदी लश्कर की कमान करने वाले जालिमों को गुमा था कि हुसैन और उनके रुफका पर पानी बंद करके और उन्हें प्यासा रखने से वो टूट जाएंगे और यजीद की बैयत करने के लिए बेबस हो जाएंगे। चनाचे 8 मुहर्रम को उमर बिन साद ने पैगाम भेजा कि यजीद की बैयत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत करने से इनकार किया। 9 मुहर्रम को उन्हें इतला मिली कि यजीदी लश्कर उन पर हमला करने के लिए तैयार है। जब रात की तारीकी हुई तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, मुझे आपकी वफादारी पर ज़रा भर भी शुबा नहीं, लेकिन जो जाना चाहे वो रात के अंधेरे में चला जाए। मगर असहाब ने जानसारी की मिसाल पेश करते हुए उनका साथ छोड़ने या वहाँ से चले जाने से इनकार किया। फिर 10 मुहर्रम का वो सियाह दिन आया जिसने ऐसी खूनी तारीख रकम की कि इंसानियत का सर हमेशा हमेशा के लिए शर्मसार किया। फज्र का वक्त था। इमाम आली मकाम फज्र की नमाज अदा कर रहे थे कि यजीदी लश्कर ने तीरों की बरसात शुरू कर दी और उनके बहुत से साथी नमाज अदा करते हुए शहीद कर दिए गए। जंग का आगाज़ हुआ और एक एक करके इमाम के जानिसार

0: سمن تیسو نواب بوزان میڈیم بھی 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے. رات کے 8:45 ہو رہے ہیں. اب آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया. नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा. केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी. वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई. भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी. अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत. भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे. और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल

0: क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

0: अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार

0: किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात के 9 बज चुके हैं। आज यौम आशूरा है। आइए इस मौके पर बातचीत सुनते हैं। मौजू है शहादत हुसैन एक नज़र में। पेश करेंगे प्रोफेसर बशीर अहमद नहवी।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم شهادت حسين علیہ السلام ایک نظر میں یہ میری گفتگو کا آج موضوع ہے۔ اولاً یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حسین علیہ السلام اسلامی تاریخ کا ایک وہ عظیم نام ہے جس کا براہ راست تعلق خاندان نبوت سے ہے और इस हैसियत में

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन, रात के 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नश्र होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विज़न दस्तावेज का आगाज़ किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विज़न को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विज़न दस्तावेज़ का आगाज़

0: किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफार्म पर यकजा हों।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वज़ीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात के वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा का एक मजमून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हर एक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मंशियात की लत को एक हसास मामला समझती है, जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाबते 1945 में तरामीम की तजवीज़ की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाज़त हासिल करने वाले जाबतों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। सहल करदा जाबतों का इतलाक़ उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिनसी हारमोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती माहदे सीटा के फवायद को ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करना है। आज लंदन में 10वीं सालाना बरतानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बरतानिया की शराकत दारी रवायती तिजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है, जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन AI, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मौाक़े के मकाम पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया सीटा दोनों ममालिक की बेहतरीन अशिया और खिदमात को एक दूसरे के लिए दस्तियाब करने पर मरकूज है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल को लंदन में मुनक़िदा सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है, जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नज़दीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नज़दीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नज़दीक थे, जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेलसी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी

रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का ये कहते हुए एतराफ किया है कि ये मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है। नेज जलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक्वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्तात का ऐलान किया, जिसके तहत भारतीय फजाइया के दो C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए ज़रूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्तात का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं, जिसमें दो भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ियों के ग्रुप से बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने उनसे भारत में रुनुमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, नेज़ भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक़ के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफ़र से भारत नेज़ भारत यूरोप शराकत दारी के इम्कानात के ताल्लुक से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाज़ात के तस्फीये का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के साथ एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इसी दौरान अमरीका और खलीजी तआवुन की कौंसिल GCC ने बहरीन के शहर मनामा में एक वजारती मीटिंग में अपनी जामे शराकत दारी का इरादा किया, जिसमें उन्होंने इलाकाई सालमियत, ईरान के साथ सफारतकारी, शाम और लबनान में इस्तेहकाम और गजा में तामीर नौ की कोशिशों के तई अपने अहद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और GCC वजारती कौंसिल के मौजूदा चेयरमैन बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने इस मीटिंग की मुआमिन सदारत की। मीटिंग में GCC रुकन ममालिक के वजराए खारजा और GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदायवी ने शिरकत की। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हकीदत व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़ियों के जुलूस निकाले गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक़ो इंसाफ के तईं पाबंदी की अकदार को तहरीक मिलती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मुकद्दस त्यौहार माशरे में यकजहती, अमन और बाहमी इज्जत के बंधन को मुस्तहकम करने के लिए लोगों को तहरीक देता है। आशूरे मुहर्रम के मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दरमियान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जुनूबी मानसून ने मजीद पेशकदमी की है। शुमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस हफ्ते के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस

0: दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। आज अयोध्या में एक अदालत ने राम मंदिर अतियात मामले में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था। अयोध्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा के अफसर KC वर्मा ने अखबार नवीसों को बताया कि उनका रिमांड बरोज़ पीर 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। जर्मनी में मुनक़िदा ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगे हासिल किए। भारतीय शूटरों ने पिस्टल और राइफल के मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 सोने, 8 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते और उन इनफरादी गैर जानबदाराना खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 14 तमगे हासिल किए। इटली 10 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर रहा। बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान आज फुलर्टन में खेले जा रहे अमरीकी ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 6 और मर्दों के सिंगल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउटी एन चेन को सीधे मुकाबले में 21-17, 26-24 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक और मुकाबले में कदम्बी श्रीकांत मलेशिया के ली जी जियाओ को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 5वीं दर्जे की खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चेन्नई ताइपी की तुंग सी तोंग को 21-12, 21-19 से शिकस्त दी जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4, 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मनशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 9:30 हुए हैं।
2: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
3: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
2: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन J&K।
1: आकाशवाणी श्रीनगर سمعین آز یوم عاشورہ ولی وات موقع پر بوزو یہ خاص پروگرام
5: سامعین آز یوم عاشورہ یہ یوم عزا یوم شہیدان وفا یہ سہ دہ اس دہ یاد کر سروری کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک برسر چا گرے بان کرت زار زار ودان تاجدار حلتا شیر خدا تو سیدت النساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اتھ موران تو لہر ودان تاریخ اسلام ونان زی سن 60 ہجری من سپز بی رہ روی عام بدکری بنیو دستور خدائے سندن ٹاٹھن بندن ہند مال و جان رود نہ محفوظ انسانن لوج ہائی ون زندگی بسر کرن اسلامی لباس لگت اس خود ساخت مسلمان روح قرآن تو روح اسلام پامال کران شریعت خدا تو نظام مصطفیٰ مشروت پن من مانی کران یمن حالاتن مز چھن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام ہند خاطر خاموشی یا گوش نشینی ممکن یمن متعلق حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ ان الحسین

0: सारे गुलाब रेत पर।
1: सामीन, आज यानी आशूरा के दिन नवासे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यको तन्हा बे यारो मददगार जलती हुई ज़मीन पर दुश्मनों के हजूम में खड़े हैं। नाना रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा सर पर और पैराहन ज़ेब तन है, लेकिन तीरों से छलनी और खून से रंगीन है। कबा का दामन अली अकबर के खून से लाल, चेहरे अनवर अली असगर के लहू से गुलनार है। पेशानी मुबारक से खून टपक रहा है और अब्बास के गम से कमर टूट चुकी है। बदन जख्मों से चूर, सीने से खून के फवारे जारी है। प्यास से कलेजा फुनक रहा है। अंसार की लाशें सामने पड़ी हैं। कड़ियल जवान बेटा शबीय पैगंबर सीने पर बर्छी खाए खून में नहाए सो रहा है। भाई की निशानी कासिम इब्ने हसन खून की मेहंदी लगाए अरूसे मौत से हमकिनार आराम कर रहा है। बहन के लाडले दाग देकर चले जा चुके हैं। लश्कर की जीनत, बच्चों की आस, सकीना का सक्का अली का शेर, कुवते बाजू शाने कटाए नहर की तराई में पड़ा है। 6 माह की जान तीरे सशोभा के नजर हो चुकी है। कतलगाह मिन्ना का नक्शा पेश कर रहा है। खयाम से भूखे प्यासे बच्चों के रोने और अल अतश की जिगर सो सदाएं आ रही है, लेकिन अल्लाह रे हुसैन का जज्बे कुर्बानी, ये इश्क खुदा का मतवाला, मुहाफिज दीन खुदा, तौहीद का शेफ्ता, सब्र और रजा का मुजस्मा, याद खुदा में महव और मुनाजात में मशगूल है। जैसे जैसे मसाइब व आलाम बढ़ते जाते हैं, चेहरा नूरानी और शगुफ्ता होता जाता है और फरमाते हैं, मेरे पालने वाले, मैं अपनी जिंदगी से उस मौत को पसंद करता हूं जो तेरी राह में हो। मेरे मौला, मुझे इसमें खुशी महसूस होती है कि मैं 70 मरतबा तेरी बारगाह में शहीद किया जाऊं, और उस मर मिटने पर मुझे फख्र है जिसमें तेरी दीन की नुसरत का राज मुजमिर हो। मेरे मालिक, तू जानता है और बेहतर जानता है कि मैंने सिर्फ तेरी मोहब्बत में सबसे हाथ उठा लिया है और फकत तेरे दीदार के शौक में अहलो अयाल को छोड़ दिया और बच्चों को यतीम बना दिया है। मेरे मालिक, अगर तेरी रजा की खातिर और इस्लाम की सर बुलंदी के लिए मेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी मेरा दिल तेरे सिवा किसी और के सामने नहीं झुक सकता। ये कहकर आपने तलवार नियाम में रख ली, क्योंकि सदाए आसमानी आ गई थी कि अपना वादा पूरा करो। आपके हाथों का रुकना था कि सारा लश्कर मुसलसल हमले पर आमादा हो गया। रिवायात में है कि 36,000 तीर अंदाज आपके जिस्म अथर पर वार कर रहे थे और 40 अफराद ने आपको घेरे में लेकर वार करना शुरू कर दिया। आप पर मुसलसल वार हो रहे थे कि नागाह एक पत्थर पेशानी अकदस पर लगा। उसके फौरन बाद जबीन मुबारक पर तीर लगा। आपने उसे निकाल कर फेंक दिया और खून को पूछने के लिए अपना दामन उठाना ही चाहते थे कि सीने अकदस पर तेरे

0: सशोभा पैवस्त हो गया जो जहर में बुझा हुआ था। उसके बाद किसी मलून ने आपके पहलू पर अपनी पूरी ताकत से नैजा मारा, जिसकी ताब न लाकर जमीन गर्म पर दाहिने रुखसार के बल गिरे। किसी ने तबर, किसी ने तलवार, किसी ने गुर्जा और किसी ने नैजे से वार किया। ऐसे में शिमर मलून खंजर लिए सामने आया, ये जानने के बावजूद कि आप नवासे रसूल अकरम और फरजंदे अली और फातिमा हो, सीने मुबारक पर सवार हो गया। बारगाह इलाही में आपका आखिरी सजदा था कि शिमर मलून ने सारे अथर को तन से जुदा करके नैसे पर बुलंद किया। आपके लबाए मुबारक से सूरह कहफ की तिलावत जारी हो गई। हुसैन पढ़ते हैं कुरान नौ के नैजा पर, लबों को चूम के आयत सलाम कहती है, तुम्हारे सजदे आखिर की शान क्या कहना कि दो जहां की इबादत सलाम कहती है। हुसैन इब्ने अली वो शहीद आजम है, अदब से जिनको शहादत सलाम कहती है।
1: वो

وہ ایک سجدہ خاص اور زیر خندق

61 हिजरी में आज ही के दिन सरजमीन करबला पर हक व बातिल के माबैन मारिका सर हुआ। ये जंग किसी सल्तनत या खत्ते जमीन के लिए नहीं थी, नहीं ये जंग किसी ओहदे या इख्तियार के लिए थी। इस जंग की बुनियाद कोई जाती दुश्मनी या इंतकाम गिरी भी नहीं थी। ये जंग सिर्फ पैगाम इलाही के आम करने के लिए थी। ये मारिका हक और बातिल का था, सच्चाई और झूठ का था। यह जंग हर लिहाज से मुनफर्द और यकता थी। इस जंग ने फतह शिकस्त का तस्वुर बदल दिया, मौत के मानी बदल दिए, जिंदगी का मकसद वाजह कर दिया। इस जंग में जो गालिब हुआ उसी को वक्त ने मगलूब साबित कर दिया। जिसने बजाहिर फतह पाई वही मफतूह बना। जो शहीद हुआ उसे जिंदगी मिल गई, जो कातिल बना वो जलील और खार हुआ। ऐसा सफ़े हस्ती पर किसी जंग में नहीं हुआ कि 72 सिपाहियों को जेर करने के लिए हजारों तीरंदाज नेजेबरदार

0: घोड़सवार और फन्ने हर्ब में माहिर हजारों पहलवान यकजा कर दिए गए हों, और वो बहादुर भी कौन हैं? उनमें हबीब इब्ने मजाहिर जैसे सिन रसीदा, हजरत अली असगर जैसे शशमाह मासूम और मोहम्मद जैसे नौ उम्र शहजादे शामिल हैं। इस जंग ने साबित कर दिया कि सच की कुव्वत क्या होती है, कि एक मुख्तसर से बेसरो सामान काफिले को मखलूब करने के लिए इतने बड़े लाओ लश्कर की जरूरत महसूस हुई, और आखिरकार यह सब लाओ लश्कर न सिर्फ नीसो नाबूद हो गया बल्कि तारीख आलम के नविश्तों में यह हमेशा के लिए मलऊन करार दिया गया। यजीद ने ओहदों का लालच, जागीरें और नकदी रकम देकर मुख्तलिफ सरदारों को अपने साथ मिला लिया। जो लालच से उस पर आमादा नहीं हुए उन्हें जोर जबरदस्ती और जुल्म से अपने साथ कर लिया। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सच्चाई और फकीरी के सिवा क्या था जो वो किसी को पेश करते? उनके पास इस्लाम के सच्चे उसूलों की नेमत थी, और यही नेमत उन्होंने अपने दस्तरखान पर फैला कर रखी थी। चिनांचे शब आशूरा उन्होंने अपने साथियों से गुफ्तगू की कि यजीद को मुझसे दुश्मनी है, कि मैं इस्लाम के उसूलों से मुनहरिफ नहीं हो सकता। अगर आप जान बचाना चाहते हो तो आप मेरा साथ छोड़कर चले जाएं। अगर हया चश्म की वजह से आप नहीं जा पाते तो मैं चिराग बुझा देता हूं ताकि आप रात की तारीकी में मुझसे दूर चले जाएं। चिनांचे इमाम अली मकाम ने चिराग बुझा दिया और दोबारा रोशनी करने पर देखा कि जो जानिसार इस्लाम वहदत के रसूल और उनके अहले बैत से अकीदा रखते हैं वो अपने फैसले पर कायम हैं। सुबह आशूरा जब मारिका शुरू हुआ तो शहीदों की फहरिस्त में सबसे पहले हजरत हुर का नाम रकम हुआ। चंद लम्हे पहले जो शख्स यजीदी फौज के अहम सालारों में था वही इमाम अली मकाम की तरफ से हक के सिपाही का फर्ज अदा करके हमेशा की जिंदगी पा गया। और जब इमाम के जानिसार हबीब, अंसार, भाई, भतीजे और भांजे हक की खातिर जाम शहादत नोश कर गए तो इमाम अपने शशमाह पिसर हजरत अली असगर को अपने हाथों में लेकर फौज अश्किया की तरफ बढ़े, उनकी उम्र का वास्ता दिया, उनके मासूम होने की बात दोहराई, उनके लिए पानी का सवाल किया तो यजीदी फौज के एक सालार हुरमुला बिन काहिल असदी ने कमान खींच ली और तीर हजरत अली असगर के गले में पैवस्त हो गया। इस तरह मासूम ने अपने वालिद इमाम अली मकाम की गोद में हक व सदाकत के लिए लब्बैक कहकर आखिरी हिचकी ली। आखिर में वक्त असर शुमर लईन ने फर्जंद इस्लाम नवासे रसूल खलफ अबू तुराब फातिमा के लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा करके अपनी तरफ से हक व सदाकत को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आज हर जबान पर इमाम का नाम अकीदत और एहतराम के साथ आता है और बातिल के ये नुमाइंदे हमेशा की लानत में गिरफ्तार हैं।
1: समीन, आप योम आशूरा के मौके पर ये खास प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। रावी थे अरशद सालिया और रशीद निजामी। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। आइए समाप्त करें शामे गरीबा।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هداني ربي الى صراط مستقيم صلوات
3: اللهم صل على محمد وعلى محمد
2: خدایا به حق محمد و آل محمد از قحط و وبا امان، از مرگ مفاجات امان. خدایا به حق محمد و آل محمد، به صدق محمد و آل محمد سنن گنهن کر گزران، سنن گنهن کر گزران، سنن اسلاف کر غیری که بحر رحمت، سنن اسلاف کر غیری که بحر رحمت. خدایا به حق بیمار کربلا سنن مرزن مریضن کر شفای کامل عطا، باقی باب الحوائج سنن حاجات تاروا، حاضرین ان هنهاجات كتاب روا مؤمنين مؤمنات ان هنهاجات روا لا بحق محمد و آل محمد مسلمانا اور دین اسلام اس کر فتح و کامر دی عطا اللهم صل على محمد و آل محمد قرآن مجید سورہ انعام آیت اللہ تبارک و تعالی فرماوان اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپو

यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शब के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट होंगे।

0: समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 589. Nearly 3,000 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In capital Caracas and the nearby coastal city of La Guaira are still feared trapped under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. U.S. Vice President J.D. Vance has confirmed that the U.S. and Iran have agreed to set up a direct deconfliction channel with military representatives from both countries. The arrangement involves representatives from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the U.S. Army Central Command being stationed in Doha, Qatar. Mr. Vance said in an interview with a British news site that Tehran and Washington have agreed to set up a direct channel in order to reduce the risk of further conflict. Indian shooters have ended their campaign at the ISSF Junior World Championship in Germany as table toppers with 24 medals, including 7 gold. They performed brilliantly in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. And that is the end of this news bulletin.
1: शब के 11:10 हुए हैं। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समय हमारी आज की नशियात बर्खास्त होती है। आपसे इजाजत लेने से पहले एक नजर कल हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश खदमत होगा पेशरफ्त। कल के हमारे प्रोग्राम का मौजू है वादी कश्मीर पर मौसमियाती तब्दीली के असरात। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने मधु किया है क्लाइमेट कंसल्टेंट मुतहरा आबदा वहीद देवा को। इनसे बात करेंगे इरफान अमीन मलिक। आपके खतूत और मेल से तरतीब दिया हुआ कश्मीरी नगमों से आरास्ता फरमाशी प्रोग्राम तुंज फरमाइश समाप्त करें शब के 10:00। प्रोग्राम आपकी खदमत में पेश करेंगे अब्दुलरशीद निज़ामी और परवीन अली। हमारी नशरियत का आगाज सुबह 6:30 पर होगा। प्रोग्राम सुबह का ही समाप्त करें 6:35 पर। मॉर्निंग लाइव शो पैम सुबह समाप्त करें सुबह 7:10 पर। सेहत से मुतलिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन नष्ट होगा सुबह 8:45 पर। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह के 9:00। शोबा खबर की पेशकश न्यूज रील समाप्त करें सुबह 9:30 पर। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी उनकी तालीमात और कलाम से मुतलिक सिलसिलेवार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खिदमत होगा सुबह के 10:00। कल का प्रोग्राम वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुलरहीम सफापुरी से मुतलिक है। तहरीर अब्दुलरशीद गमगीन की है। रावी हैं फैयाज अहमद फैयाज और रिफत आरा। सुबह 10:30 पर मॉर्निंग लाइव शो में या पयाम सुबह में हमारे मेहमान होंगे SSP ट्रैफिक मोहतरम एजाज अहमद भट्ट। इनसे रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से बातचीत होगी। इनसे हम कलाम होंगे अब्दुलरशीद निज़ामी और साइका सलीम। अब्दुलरशीद डार हारपुरी और साथियों की आवाजों में आप चक्री उरो समात करेंगे सुबह 11:30 पर और दिन में 2:30 पर। इनसे आप कलाम रहमान दारिल और कलाम अहद जरगर सुनेंगे। बज़्म निस्वारस्त होगी दोपहर 12:40 पर। दिन में 1:10 पर और सपहर 3:00 प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 नष्ट होगा। शीना प्रोग्राम समाप्त करें सपहर 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम के 5:00 पेश होगा। शाम 6:05 पर देहाती भाइयों के प्रोग्राम में मामूल की नशियत के अलावा गुलाम हसन गोरसे और MS फिरदोस के माबेन जरी तरक्याती स्कीम HADP से मुतलिक गुफ्तगू होगी। शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज रात के 8:00 ब्रॉडकास्ट होगा। जिलानामा पेश होगा रात 8:30 पर। कल का जिलानामा जिले गांधरबल से मुतलिक है और रात 9:15 पर स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर नष्ट होगा। कल के प्रोग्राम का मौजू है मसनून दुआ तुहंद माना। मुकर्रर है मौलाना फैयाज अहमद जरूर प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे

मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरूआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छिड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने

भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सपने कितने सुंदर, कितने प्यारे, ये हमारी आंखों में रंग भरते हैं, दिल में उम्मीद जगाते हैं और जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं। कुछ सपने रात की नींद में आते हैं तो कुछ खुली आंखों से देखे जाते हैं। कोई अपनों के साथ खुशियों का संसार बसाने का सपना देखता है तो कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने का। सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो बताते हैं कि अगर हौसला हो तो कल्पना भी एक दिन हकीकत बन जाती है।

लिबास फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कहते हैं अगर जिंदगी में सपने न हो तो जीने का उत्साह भी अधूरा रह जाता है। सपने ही तो हैं जो हमें नई उम्मीद देते हैं, नई राह दिखाते हैं और हर सुबह को एक नया अर्थ देते हैं। कुछ सपने बचपन की मासूम आंखों में पलते हैं, कुछ जवानी के अरमानों में रंग भरते हैं, तो कुछ उम्र के हर पड़ाव पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाते हैं। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वो मन के उस खुले आकाश में उड़ते हैं जहां हर इच्छा को पंख मिल जाते हैं।

मासूम फिल्म का गाना आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है

इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

हरजाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। सपनों की दुनिया सचमुच बड़ी निराली होती है। यहाँ ना कोई बंधन होता है ना कोई दूरी। मन जहाँ चाहे जैसे चाहे उड़ान भर सकता है। सपने कभी फूलों की तरह कोमल लगते हैं तो कभी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे। कभी वो हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं तो कभी किसी अपने की मीठी याद बनकर आंखों में उतर आते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में जब मन थकने लगता है तब यही सुंदर सपने हमें सुकून का एक कोना देते हैं। वो बताते हैं कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद खुशियों की एक नई किरण हमारा इंतजार कर रही होती है।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। और जब इन सपनों को साथ मिलता है मधुर संगीत का, तो हर धुन दिल के किसी कोने में जाकर बस जाती है। कोई गीत हमें बीते हुए सुनहरे दिनों की याद दिलाता है, कोई आने वाले कल की उम्मीद जगाता है, तो कोई बिना कुछ कहे ही मन की बात कह जाता है। यही तो है संगीत का जादू, जो सपनों को सुर देता है और भावनाओं को आवाज़।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में ठीक 1 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरूआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छिड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केन्द्रित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी सीईटीए के साथ अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लंदन में आयोजित एक व्यापार सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और ब्रिटेन के उद्योग जगत से आपसी सहयोग को और मजबूत करने, नवाचार को गति देने तथा साझा समृद्धि के लिए अधिक महत्वाकांक्षी निवेश करने का आह्वान किया। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों के T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर ही सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

है, सपने हैं और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई धुन चांदनी रात को और भी हसीन बना देती है, तो कभी बारिश की बूंदों में भी संगीत खुल जाता है।

दुल्हन एक रात की फिल्म का आपने गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। एक सपने की सुंदर कल्पना, सपने में एक मासूम सी इल्तिजा, कबूल हो जाए तो सो जाऊं।

जाल फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कुछ बातें होठों तक आकर भी शब्द नहीं बन पाती, वो दिल के किसी कोने में चुपचाप बस जाती हैं, और जब कोई मधुर धुन उन्हें छूती है तो वही खामोशी एक दास्तान बन जाती है।

अनपढ़ फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहती अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 25 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म से आपने गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। इसे लिखा SH बिहारी ने और संगीत दिया OP नैयर ने।

ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस दिल की पुकार है जो अपने किसी बेहद अजीज को हर धड़कन में महसूस करता है। इंतजार की खामोशी हो या यादों की महक, ये नगमा हर उस एहसास को आवाज देता है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। पतिता फिल्म का ये गाना आपने सुना लता और हेमंत कुमार की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना। गीता दत्त की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब कोई साधारण सी बातचीत भी दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। न जाने किस बात में ऐसा जादू होता है कि अनजाने में ही दो दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ एहसासों को नाम नहीं दिया जा सकता, बस उन्हें महसूस किया जा सकता है।

ममता फिल्म का गाना आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने सुरीले गीतों की यही तो खूबी है कि वो प्रेम को बड़े सलीके और सादगी से बयान करते हैं। उनमें अपनापन है, भरोसा है और साथ निभाने का एक खामोश सा वादा भी।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। वक्त हुआ है 1:57 और 20 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के सेशल्स के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरूआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केन्द्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना का सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

नदिया के पार फिल्म का गाना आपने सुना। हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, उनमें ना कोई शर्त होती है ना कोई दिखावा, बस साथ निभाने का एक सच्चा वादा होता है।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ फूलों में नहीं, यादों में भी बसी होती हैं। वो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि हर बार किसी अपने का एहसास और गहरा कर जाती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजिया सुल्तान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, इसे लिखा जानिसार अख्तर ने और संगीत दिया खयाम ने। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते, वो सिर्फ एहसासों में जिए जाते हैं। यही अनकही कसक, यही खामोश तलाश और मन की गहराइयों में छिपी बेचैनी इस गीत की रूह थी।

मौसम फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। जिंदगी की तेज रफ्तार में अक्सर हम उन लम्हों को याद करने लगते हैं जब समय जैसे ठहर सा जाया करता था। न किसी मंजिल की जल्दी थी, न जिम्मेदारियों का बोझ, बस कुछ सुकून भरे पल, अपनों का साथ और मन की बेफिक्री।

आंधी फिल्म का गाना आपने सुना। लता और किशोर की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने ये गजल सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। वक्त हुआ है 2:59 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।

0: मोदी आज से 3 दिन के सेशल्स राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केन्द्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11:06। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। रात की इस खामोश फिजा में जब शहर की रफ्तार कुछ पल के लिए ठहर जाती है और चांद अपनी चांदनी से हर एहसास को

फिल्म मेरा साया का ये नगमा आवाज थी लता जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में। रात का ये पहर अक्सर हमें खुद से मिलने का मौका देता है। दिन भर की भाग दौड़ थम जाती है और दिल की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी बातें हमेशा लंबे अल्फाजों में नहीं होती। कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक दुआ और कभी सिर्फ दो सच्चे लफ्ज किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपके दिल में किसी अपने के लिए मोहब्बत, शुक्रिया या अपनापन है तो उसे कहने में देर मत कीजिए। हो सकता है वही दो लफ्ज किसी के लिए सबसे कीमती तोहफा बन जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। इन्हीं खूबसूरत जज्बात को बेहद दिलनशी अंदाज में पेश करता है अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। इस यादगार गीत को अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाजों से सजाया है आशा भोसले जी ने और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन साहब ने। उनकी आवाजों का ये अनोखा संगम इस गीत को और भी खास बना देता है जब उनकी जबान से निकलते हैं। तो आइए रात की इस महफिल में कुछ पल अपने दिल के नाम करते हैं। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान सजाइए, पुरानी यादों को प्यार से सलाम कीजिए और सुनिए ये सदाबहार नगमा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे अल्फाज किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद जगा देते हैं।

दो लफ्जों की है दिल की कहानी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आशा जी और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के इस खामोश फिजा में आप सुन रहे हैं अरुणिमा। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा कोई बड़ी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि किसी अपने का साथ होता है। एक ऐसा साथ जो मुश्किल राहों को आसान बना दे और उम्मीद की शमा हमेशा रोशन रखे। जिंदगी में हर वक्त किसी का साथ मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन अपने हौसले का साथ कभी मत छोड़िएगा। कहते हैं जब इंसान खुद पर यकीन रखता है तो मंजिल भी उसका इस्तकबाल करती है। इस खूबसूरत जज्बात और सुरों से पिरोया ये अगला सदाबहार नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आवाज लता मंगेशकर जी की इसकी दिल को छू लेने वाली धुन तैयार की है मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और इसके गीतों को लिखा है जो बेहद जज्बाती है संतोष आनंद साहब ने। तो आइए इस पुरसुकून रात में रिश्तों की गर्माहट, भरोसे की खुशबू और उम्मीद की रोशनी को महसूस करते हैं। अपने दिल को इस मधुर सुरों के हवाले कीजिए और सुनिए ये बेहद खूबसूरत नगमा। रिश्तों का सबसे खूबसूरत रूप वही है जहां भरोसा, मोहब्बत और दुआएं साथ चलती है, और जब अपने साथ हो तो हर सफर थोड़ा आसान और हर सुबह थोड़ी ज्यादा रोशन लगने लगती है। तो आइए हम और आप मिलकर चलते हैं इस बेहद खूबसूरत संगीत के सफर पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों की कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37 और 32 सेकेंड। रात का ये पुरसुकून पहर हमें जिंदगी की रफ्तार से कुछ पल चुरा कर अपने अंदर झांकने का मौका देता है। कभी कभी दिल उन लम्हों को याद करता है जब जिंदगी में जल्दबाजी कम थी, सुकून ज्यादा था और छोटी छोटी सी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत लगती थी। लेकिन एक खूबसूरत सच ये भी है कि सुकून सिर्फ बीते हुए कल में नहीं बल्कि आज के इस पल में भी हो सकता है। अगर हम कुछ लम्हे अपने लिए निकाल लें, अपनों की कदर करें और हर नए दिन का शुक्र अदा करें तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है, खिलखिलाने लगती है। इन्हीं नाजुक एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है अगला ये सदाबहार मौसम फिल्म का नगमा दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन। इस बेहद खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से अमर बनाया है लता मंगेशकर जी और भूपेंद्र सिंह ने। दोनों की आवाजों का ये संगम इस गीत को एक अलग ही रूहानी एहसास दिलाता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इस पुरसुकून रात में कुछ पल खुद के नाम करते हैं, यादों की खुशबू, फुर्सत की मिठास और सुरों की नफासत के साथ सुनते हैं ये बेमिसाल नगमा। कहते हैं कि फुर्सत का इंतजार मत कीजिए, अपने हर दिल में कुछ पल सुकून के जरूर रखिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि हर लम्हे को दिल से जीना है और यही आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा।

फुर्सत के रात दिन। मौसम फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा, आवाजें थी लता जी और भूपेंद्र साहब की। रात की यह खामोश फिजा अक्सर हमें सोचने का वक्त देती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब कुछ ठहर सा जाता है, तब दिल अपने कुछ ख्वाबों, कुछ यादों और कुछ अधूरी ख्वाहिशात से मुलाकात करता है। ऐसे ही लम्हे में एक बात हमेशा याद रखिए, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न लगे, सफर

कभी बेकार नहीं जाता। हर कदम अपने कुछ नया सीखने और सिखाने का होता है। हर तजर्बा हमें और मजबूत बनाता है। उम्मीद का दिया अगर दिल में जलता रहे तो दूर का उजाला भी एक दिन अपना हो जाता है। ऐसे ही गहरे एहसासात को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए हैं फिल्म आनंद का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इस अमर नगमे को अपनी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली आवाज से अमर बना दिया है मुकेश साहब ने, और इसके बोल लिखे हैं बेहद जज्बाती योगेश ने, जिनकी जिंदगी जिसकी सब कुछ है इसमें। तो आइए रात के इस पुरसुकून सफर में कुछ पल ठहरते हैं, अपने ख्यालात को खुली फिजा में उड़ने देते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार रूह को छू लेने वाला नगमा। जिंदगी का हर नया सवेरा हमें एक नया मौका देता है। बीती हुई बातों से सबक लीजिए, लेकिन अपने आज की रोशनी को कभी कम मत होने दीजिए। उम्मीद, सब्र और मुस्कुराहट, यही वो सब हम सफर है जो हर अंधेरी रात के बाद हमें नई सुबह तक लेकर जाते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं इस बेहद खूबसूरत सफर पर, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: फिल्म प्रेम पर्वत के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत अरुणिमा से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर अगला प्रोग्राम ठीक 5:10 पर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेशल्स के संबंधों का आधार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच निकट संपर्क में निहित रहा है। प्रमुख समुद्री सहयोगी देश के रूप में सेशल्स का स्थान क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र विकास के भारत के महासागर दृष्टिकोण में विशिष्ट है। अविकसित देशों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता में भी वो भागीदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों

0: आधारित एक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वामित्व के लाभ प्राप्त होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 के अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्जी रॉड्रिग्स ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 Sarthis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "The India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology."

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और दोस्तों, हम सब एक नई सुबह में कदम रखने जा रहे हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नए सपने के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे आज की इस नई सुबह में, एक नई उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला दिन अच्छा हो और हर तरफ खुशियां हो, हर तरफ खुशहाली हो। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम भारतीय मानते

कि हम अपने हर दिन ही नहीं बल्कि हर काम की शुरुआत हम उस खुदा का नाम लेकर करते हैं, उस ईश्वर का नाम लेकर करते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। हर काम हम उनके नाम से करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं से कि हमारा दिन अच्छा हो, हमारी जिंदगी अच्छी हो और हमारी हर सुबह खूबसूरत हो। तो आइए हम भी आज की सुबह का आगाज करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना के साथ, ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। फिल्म द बर्निंग ट्रेन से आवाज है।

हमारा दिन अच्छा हो, हमारी जिंदगी अच्छी हो और हमारी हर सुबह खूबसूरत हो। तो आइए हम भी आज की सुबह का आगाज करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना के साथ, ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। फिल्म द बर्निंग ट्रेन से आवाज है सुषमा श्रेष्ठ और पद्मनी कोल्हापुरे के। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में

तेरी है जमीन तेरा आसमां, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, सब कुछ तेरा है। हम इंसान बस कठपुतली की तरह है। तो ईश्वर है, तो खुदा है, तो भगवान है, तो सब कुछ है, और इसीलिए हम सब तुम्हारे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि नई सुबह सुनहरी किरणों के साथ आपका इस्तकबाल करता है, चल रही है फिजा में ताजगी, हवा में एक नई उम्मीद है, और हर नया सवेरा हमें ये पैगाम देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जिंदगी भी सुबह की तरह है, चाहे रात कितनी ही लंबी या मुश्किल क्यों न रही हो, सूरज हर रोज बिना शिकायत के फिर उगता है। यही हमें सिखाता है कि बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आज को पूरे यकीन और मुस्कुराहट के साथ अपनाइए। ऐसा ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हैसियत से। सुकून भरा यह नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया है येशुदास ने, और साथ ही साथ वाणी जयराम ने। दोनों की आवाजों की सादगी और आत्मीयता इस गीत को सुबह की ताजा हवा जैसा एहसास देती है। तो आइए अपनी पहली चाय की चुस्की के साथ दिल में नई उम्मीदों का उजाला भरिए और इस खूबसूरत सुबह का इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि हम सब एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत कर चुके हैं। भले ही कुछ लोग अभी भी अपने बिस्तर में हैं, बाहर नहीं निकले हैं, जगह नहीं है, लेकिन ये परिंदे चहचहाने लगे हैं, अपने गीत सुनाने लगे हैं और आपको जगाने लगे हैं अपनी इस आवाज के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह नगमा था फिल्म हैसियत से, आवाज थी यशुदास की। दोस्तों कहते हैं कि हर सुबह हमारे लिए एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई उम्मीद लेकर आता है, और हम भी आज की सुबह आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नए ढेर सारी मुस्कुराहट लेकर आए, यही उम्मीद करते हैं। सुबह का ये वक्त हमें ठहर कर ये सोचने का मौका देता है कि वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन हर नया दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका जरूर देता है। और दोस्तों कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान है, वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर। ना कुछ कहे, हमें सब्र, तजर्बा और आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। जो बीत गया वो तजर्बा बन जाता है, और जो आने वाला है वो एक नई उम्मीद बनकर हमारा इंतजार करता है। इसलिए हर सुबह का इस्तकबाल एक नई सोच और नए जज्बे के साथ कीजिए। इन्हीं ख्यालों को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए हैं अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म जीवनधारा का। समय के दर्पण में, समय सचमुच बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली है। इस दिल को छू लेने वाले नगमे को अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज से सजाया है सुरेश वाडेकर और आशा भोसले जी ने। दोनों की ये गायकी इस गीत को एक गहरी संवेदना। तो आइए इस ताजगी भरी सुबह में कुछ पल खुद के साथ बिताइए, दिल को सुकून दीजिए और सुनिए ये बेहद खूबसूरत नगमा जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। वक्त बदलता है और उसी वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं, इसलिए कभी अच्छे दिनों में घमंड मत कीजिए और मुश्किल दिनों में हिम्मत मत हारिए। हर सुबह ये यकीन लेकर उठिए कि आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा, आपको कल से बेहतर बनाने आया है ये दिन। और इसी के साथ मुस्कुराते हुए आगाज कीजिए।